FM के 101.7 MHz पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ माह की तिथि 7, तदनुसार 28 मई ईस्वी सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का चाई भाषा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबर्धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल के आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,520 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रेमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

राजा जनक की यज्ञशाला में सीता को वरण करने के लिए आए नृप समुदाय ने श्री राम तथा लक्ष्मण को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा। कुछ को वो वीर रस की प्रतिमूर्ति दिखे तो कुछ ने उन्हें अपने काल के रूप में देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। इसी प्रकार स्त्रियां भी हर्षित होकर दोनों भाइयों को अपनी मन भावन छवि में देख रही हैं। उनके लिए मानो स्वयं श्रृंगार रस मानव का अनुपम रूप धारण कर वहां पहुंच गया है। विद्वानों को प्रभु का विराट रूप दिखा और जनक जी के सगे संबंधियों ने उन्हें अपने कुटुंब के रूप में देखा। रानियों को वो अपने बालक प्रतीत हो रहे हैं तो योगी यति उनमें शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हुए, किंतु सीता जी जिस भाव से श्री राम को देख रही हैं उसके सुख और स्नेह का वर्णन करना कठिन है। ना तो वो स्वयं उसे व्यक्त कर सकती हैं, ना ही कवि उसके लिए सक्षम है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस गान। गायक कलाकार थे रंजना जोगलेकर और साथी। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101

107 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। भक्ति संगीत के कार्यक्रम समर्पण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है।

श्रोताओं, कार्यक्रम समर्पण का ये पहला गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में, और अब आइए सुनते हैं जगजीत सिंह और साथियों के स्वरों में ये भक्तिमय गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले सकेंगे आनंद मोहन पाठक के स्वर में संगीत रचनाओं का। सवेरे 7 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। सवेरे 8 समाचार प्रभात का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से, यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे सवेरे 8:15 पर। उसके बाद प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से सवेरे 8:30 पर। श्रोता, हमारे केंद्र से सवेरे 8:40 पर सुनिएगा लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे खोरठा लोकगीत रीता कुमारी और साथियों के स्वरों में। सवेरे 9 सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। सवेरे 9:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा दिन के 10। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण होगा दिन के 10:30 से, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार दोपहर 1:10 पर। आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम दोपहर 1:20 पर। प्रादेशिक समाचार दिन के 2:55 पर। आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम सुनिएगा दिन के 3:00। मुख्य समाचार शाम 4:00। आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम शाम 4:02 पर। मुख्य समाचार शाम 5:00। उसके बाद हमारे केंद्र से सुनिएगा कार्यक्रम विवरण शाम 5:02 पर। शाम 5:05 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे युगल गीत। शाम 5:30 पर सुनिएगा हमारे किसान भाइयों और किसान बहनों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा धान फसल के लिए खेत की तैयारी। मनोरंजन कीजिएगा संथाली लोकगीत से शंकर चंद्र मुर्मू और साथियों के स्वरों में। मौसम की जानकारी सुनिएगा, साथ ही आप इस कार्यक्रम में भेंट वार्ता भी सुन सकेंगे। श्रोता, वस्तुओं के बाजार भाव की जानकारी भी इस कार्यक्रम में दी जाएगी, और साथ ही संथाली लोकगीत से मनोरंजन कीजिएगा सुराई मुर्मू और साथियों के स्वरों में। श्रोताओं, शाम 6:00 मुख्य समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। उसके बाद हमारे केंद्र से सुनिएगा शाम 6:02 पर बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। शाम 6:30 पर सुनिएगा संथाली कार्यक्रम। श्रोताओं, शाम 7:00 प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से, यहीं से ज़िले में आजकल का प्रसारण होगा शाम 7:10 पर। उसके बाद फिर श्रोताओं, उसके बाद आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा शाम 8:00। शाम 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से, यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 9:00। रात्रि 9:15 पर सुनिएगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। रात्रि 10:00 सुनिएगा हमारे केंद्र से प्रसारित गज़लों का प्रोग्राम महफिल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग होगा रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से, यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, आज के सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं आनंद मोहन पाठक के स्वर में संगीत रचनाओं का। सबसे पहले सुनते हैं ये भजन।

श्रोताओं, आज के सुगम संगीत कार्यक्रम में आप आनंद ले रहे हैं आनंद मोहन पाठक के स्वर में संगीत रचनाओं का, और अब आइए सुनते हैं ये गजल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे आनंद मोहन पाठक के स्वर में संगीत रचनाओं का। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम जोहार चायबासा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त उदय पान। तो श्रोताओं, आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत जिसे गाया है किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी।

श्रोताओं, जोहार चायबासा कार्यक्रम का ये पहला गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम था चलती का नाम गाड़ी। आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है बरसात की रात।

बरसात की रात। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और अब श्रोताओं, आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में फिल्म रजनीगंधा का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म रजनीगंधा का गीत मुकेश की आवाज़ में। अगला गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है इश्क इश्क इश्क।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चायबासा केंद्र FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अपने रेडियो दोस्त उदयपान के साथ आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। और श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है प्यासा।
3: Yeah.

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म प्यासा का ये गीत। अगला गीत आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में, फिल्म का नाम है मनचली।

0: श्रोताओं, ये था मुकेश की आवाज़ में फिल्म मंचली का गीत। और भाई, सुनते हैं ये ज़रूरी संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगल रहा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रणबला देवी गाँव बारे भक्तो तो घर आई में हमरे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है।
6: नितुम बुरम सिंह तमसोय अनिता तमसोय भुरुपा सेना करना ऐसे दुखुर मिना ना यापा मैं रिया तपा मैं रिया वाह बेटा निका
7: अन्या नितुम दो मुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन तुम कितमई कोड़ा मुनी में बुनियादी ने बागिया तो कि दोनों से यार की कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तो मैं दुर्गम गया तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम ते ना आप ही लेता ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आएं आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: श्रोताओं, इस संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम जोहार चाय भाषा में। श्रोताओं, अब ये बात करते हैं हमारे भारतीय सेना के वीर जवानों के बारे में जो अपने घर परिवार और गांव से दूर रहकर देश की सेवा करते हैं। वाकई इनका बलिदान ऐसा है जिन्हें पूरी तरह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। श्रोताओं, हर प्रकार की तकलीफ़ों के बावजूद वे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। हमें सदैव हमारे देश के सैनिकों का सम्मान करना चाहिए और उनके बलिदान को दिल में संजोकर रखना चाहिए।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म लीडर का गीत। और इस गीत के बाद आइए सुनते हैं येसुदास और हेमलता की आवाज़ों में फिल्म चित्तचोर का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे येसुदास और हेमलता की आवाज़ों में फिल्म चित्रचोर का ये गीत। आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है राजा और रंक।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में राजा और रंक फिल्म का ये गीत। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 MHz पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है ये वादा रहा।

श्रोताओं, तो आप सुन रहे थे ये वादा रहा, इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। और अब श्रोताओं, ये सुनते हैं लता मंगेशकर और बबला मेहता की आवाज़ों में फिल्म चांदनी का ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही हमारा आज का जोहार चाईबासा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार चाईबासा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 8 बजने वाले हैं, यानी वक्त हो गया है समाचारों का। समाचारों के लिए हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है?
1: जीरो
0: जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार।

0: से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधन परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
5: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराव और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
6: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए, जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन

0: ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है, ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू, हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्स 51st प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली, रिव्यूज 7 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 30,000 करोड़ रूपीज। Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervor. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। झारखंड के सभी 24 जिलों में खुलेंगे अबुआ दवाखाना, कैबिनेट ने दी मंजूरी। राज्य सरकार मुफ्त देगी एलोपैथी और आयुष की दवाइयां। सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का निर्णायक अभियान तेज। आईजी अभियान ने कहा, नक्सलियों की पूरी घेराबंदी, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। राज्य भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है बकरीद का त्यौहार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। राजधानी रांची सहित राज्य के 20 जिलों में आज बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और राज्य में झारखंड T20 प्रीमियर लीग का 10 जून से होगा आयोजन। 6 टीमें लेंगी हिस्सा। 30 मई को होगी 241 खिलाड़ियों की नीलामी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं, कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी 24 जिलों में अबुआ दवाखाना खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन केंद्रों में एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा पद्धति से इलाज की सुविधा एक ही जगह उपलब्ध होगी। शुरुआत में 745 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में एकीकृत

0: औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहां जरूरी दवाइयां निःशुल्क दी जाएंगी। कैबिनेट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक पदार्थों से जुड़ी सूचनाएं देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए नई पुरस्कार नीति को भी मंजूरी दी। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान अब अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच गया है। सारंडा के घने जंगलों में छिपे नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस, कोबरा, जगुआर और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम लगातार अभियान चला रही है। आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने कहा कि सुरक्षा बलों का अभियान सही दिशा में चल रहा है और नक्सलियों की पूरी तरह घेराबंदी कर दी गई है।
1: अबूद में ये अंतिम कील है जो हम लोगों को ठोकनी है और इसमें लगभग सभी नक्सल्स जो इम्पोर्टेंट नक्सल थे वो या तो सरेंडर हो गए या फिर न्यूट्रलाइज हो गए। बाकी जो नक्सल्स बचे हुए हैं उनसे मेरी अपील है कि या तो आप सरेंडर हो जाइए अन्यथा न्यूट्रलाइज हो जाएंगे।
0: सरायकेला खरसावां जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत बुरुडी से कांदरबेड़ा के बीच सुवर्णरेखा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किया। उन्होंने कहा कि पुल बनने से क्षेत्र का सीधा संपर्क NH-32 से जुड़ जाएगा जिससे आवागमन, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुविधा होगी। इस दौरान उन्होंने बुरुडी में जल्द डिग्री कॉलेज निर्माण शुरू कराने की घोषणा भी की।
2: चंडील से ही आना जाना सुविधा हो, नहीं तो यहाँ कांडरा जाना पड़ेगा इधर, फिर नहीं तो घूम कर गम्हरिया होते तो फिर 15 किलोमीटर, इसीलिए यहाँ हो जाने के बाद NH पकाने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगेगा। ये सारा सुविधा को देखते हुए हम जो मुख्यमंत्री थे उसी समय ये सब हम सैंक्शन करा दिया और इसी बुरुडी में ही डिग्री कॉलेज भी बने ताकि यहाँ का विद्यार्थी कहीं दूसरा जगह जाके पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा।
0: खूंटी जिले में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से 29 मई से 4 जून तक चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना तथा समाज में फैली झिझक और भ्रांतियों को दूर करना है। उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन ने कहा कि महामारी से जुड़े विषयों पर पुरुषों को भी जागरूक करना जरूरी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर में ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कुर्बानी के साथ इसकी शुरुआत की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को बकरीद की बधाई दी। जामताड़ा जिले में बकरीद शांति, सद्भाव एवं सामाजिक समरसता बनाए रखते हुए हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा संवेदनशील एवं अति संवेदनशील स्थलों पर आवश्यक पुलिस बल के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उपायुक्त आलोक कुमार ने जिलेवासियों से शांतिपूर्ण वातावरण में हर्षोल्लास से बकरीद मनाने की अपील की है।
3: आप सभी से ईद उल जुहा के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। ईद उल जुहा बकरीद त्याग, समर्पण, भाईचारा एवं मानवता का संदेश देने वाला पर्व है। साथ ही साथ यह पर्व आपसी प्रेम, सौहार्द एवं सामाजिक एकता और मजबूत करता है। मैं समस्त जिलेवासियों से अपील करता हूं कि शांति, सद्भाव एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं।
0: सिमडेगा में अफीम तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस की नारकोटिक्स विरोधी टीम और सिमडेगा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करीब 33 किलो अफीम बरामद की गई है। इसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। एसडीपीओ धर्मदेव पासवान ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर नागपुर ले जाया गया है।
4: जांच में उसके पास से अफीम बरामद हुआ। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ वो बताया कि सिमडेगा में कुछ अफीम रखा हुआ है, जिसे कि नारकोटिक पुलिस नागपुर द्वारा बरामद किया गया है और जब्त सामान लगभग 33.76 किलोग्राम वजन का अफीम है। 23,35,000 रुपया भी बरामद किया गया है। जब्त सामानों का कीमत लगभग 2 करोड़ रुपया है।
0: राजधानी रांची सहित राज्य के 20 जिलों में आज बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा को छोड़कर राज्य के अधिकांश जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राज्य में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की तर्ज पर बहुप्रतीक्षित T20 प्रीमियर लीग का आयोजन 10 जून से होगा। जेएससीए की ओर से आयोजित होने वाली इस लीग में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें रांची कैपिटल्स, जमशेदपुर स्टीलर्स, धनबाद डायमंड्स, छोटा नागपुर रॉयल्स, कोयलांचल सुपर किंग्स और संथाल स्ट्राइकर्स शामिल हैं। लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 30 मई को जमशेदपुर के द वेव इंटरनेशनल में आयोजित होगी। जेएससीए ने नीलामी के लिए 241 खिलाड़ियों की सूची जारी की है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, कैबिनेट का फैसला, हर जिले में अबुआ दवाखाना, ड्रग तस्करी की सूचना देने पर 2 लाख रुपए तक का इनाम। दैनिक जागरण की सुर्खी है, राज्य सरकार का डीए 9% तक बढ़ा। हिंदुस्तान ने लिखा, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। और दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आईपीएल के एलिमिनेटर मैच में वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा गिल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड के सभी 24 जिलों में खुलेंगे अबुआ दवाखाना, कैबिनेट ने दी मंजूरी। राज्य सरकार मुफ्त देगी एलोपैथी और आयुष की दवाइयां। सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का निर्णायक अभियान तेज। आईजी अभियान ने कहा, नक्सलियों की पूरी घेराबंदी, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। राज्य भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है बकरीद का त्यौहार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। राजधानी रांची सहित राज्य के 20 जिलों में आज बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और राज्य में झारखंड T20 प्रीमियर लीग का 10 जून से होगा आयोजन। 6 टीमें लेंगी हिस्सा। 30 मई को होगी 241 खिलाड़ियों की नीलामी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 8:43 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आ जाइए, आनंद लेते हैं। खोरठा लोकगीतों का कलाकार है रीता कुमारी और साथी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा आज का लोक गीतों का कार्यक्रम माटी की महक अब यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे। खोरठा लोकगीतों का कलाकार थीं रीता कुमारी और साथी। श्रोता, हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

विविधा कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को मेरा यानी उदयपान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमारे कार्यक्रम भी आप लगातार सुन रहे होंगे। श्रोताओं, इन दिनों काफ़ी गर्मी का वातावरण है और आने वाले दिनों में बरसात के मौसम की भी आरंभ होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में श्रोताओं, अपना ज़रूर आप ख्याल रखें,

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आइए सबसे पहले बात करते हैं बारिशों के दौरान होने वाली आम बीमारियों के बारे में। श्रोताओं, मानसून के मौसम में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने वाली एक जानलेवा बीमारी डेंगू एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होती है। डेंगू के कुछ सामान्य लक्षणों में तेज़ बुखार, चकत्ते, सिरदर्द, अति संवेदनशीलता और कम प्लेटलेट काउंट शामिल हैं। डेंगू से बचने के लिए अपने घर से सभी प्रकार के रुके हुए पानी को हटा दें और आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। श्रोताओं, इसी प्रकार दूषित भोजन और दूषित पानी से होता है टाइफाइड। श्रोताओं, यह संक्रमण साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है जो गंदे पानी और अस्वच्छ परिस्थितियों में पनपता है। यही कारण है कि बाहर का खाना, खासकर मानसून के दौरान खाने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। पानी से विभिन्न प्रकार के दूषित पदार्थों को हटाने के लिए घरों में वाटर प्यूरीफायर लगाया जाना चाहिए। श्रोताओं, इसी प्रकार हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन और पानी के सेवन से होता है। हेपेटाइटिस ए लीवर को प्रभावित करता है, इसलिए ये जानलेवा भी हो सकता है। हेपेटाइटिस ए से बचने के लिए ये सुनिश्चित करें कि आप जो भी फल और सब्जियां खाएं, उन्हें अच्छी तरह से धो लें। कच्चे खाद्य पदार्थों को धोने और उन्हें उपयोग के लिए सुरक्षित बनाने के लिए श्रोताओं, उसे जो है अच्छी तरह से धोना ज़रूरी है। वायरल बुखार ये भी काफ़ी आम है, खासकर जब मौसम में अचानक बदलाव होता है। ठंड लगना, बुखार और बदन दर्द इसके मुख्य लक्षण हैं। वायरल बुखार संक्रामक होता है और शारीरिक संपर्क या हवा में मौजूद बूंदों के जरिए फैलता है और ये संक्रमण 3 से 7 दिनों तक रहता है। श्रोताओं, भाई ये बात करते हैं कि मानसून की बारिश के मौसम में बरती जाने वाली क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। पहला है साफ पानी पिएं। मानसून में बीमारियों का एक मुख्य कारण दूषित पानी पीना है। सुरक्षित रहने के लिए स्वच्छ पानी पीना सुनिश्चित करें। बोतल बंद पानी से बचें और इसके बजाय जो है वाटर प्यूरीफायर लगवाएं, ताकि पानी पीने के पानी में जो बैक्टीरिया और वायरस के अंश न रहें। मानसून के दौरान बाहर खाना खाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अस्वच्छ परिस्थितियों और भोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाली दूषित पानी के कारण पेट के संक्रमण, हेपेटाइटिस ए जैसी कई बीमारियों का खतरा हो सकता है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि घर अच्छी तरह से हवादार और साफ हो। यदि आपके घर में कहीं भी रिसाव या नमी हो तो उन्हें ठीक करवा लें, ताकि अस्थमा के दौरे और सांस संबंधी समस्याओं से बचा जा सके। श्रोता, मानसून का मौसम ऐसा होता है जब आप तले हुए और मसालेदार स्नैक्स का आनंद लेते हैं और मौसम का लुत्फ़ उठाते हैं। हालांकि बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए बाहर का खाना खाने से हमें बिल्कुल बचना चाहिए। पीने के पानी पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मानसून के दौरान ये बीमारियों का मुख्य स्रोत होता है। तो श्रोता, हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि मानसून के दौरान हमें किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं और उनसे हमें किस प्रकार बचना चाहिए या बचाव के उपाय अपनाने चाहिए। श्रोताओं, आज 28 मई है और आज ही के दिन जन्म हुआ था वीर सावरकर जी का। वीर सावरकर एक महान विचारक, लेखक और क्रांतिकारी थे जिनका जन्म महाराष्ट्र के भागुर में हुआ। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए गहरी प्रतिबद्धता विकसित की और हिंदुत्व विचारधारा को आकार दिया जो भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान पर जोर देती है। श्रोता, उनके राजनीतिक दर्शन ने एकीकृत हिंदू राष्ट्र की वकालत की, जिससे कई विवाद उत्पन्न हुए, विशेषकर राष्ट्रवाद और धर्म निरपेक्षता के संदर्भ में। श्रोताओं,

विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 में महाराष्ट्र के भागुर शहर में एक चित्तपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो अपने मजबूत सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों के लिए जाना जाता था। कम उम्र से ही सावरकर अपने माता पिता के शिक्षा के प्रति समर्पण और गहरी देशभक्ति की भावना से प्रभावित थे। माता पिता को जल्दी खो देने के बाद उनके बड़े भाई गणेश उनके मार्गदर्शक बने, जिन्होंने उन्हें सहारा और प्रेरणा दोनों दी। इस पालन पोषण वाले और करीबी पारिवारिक माहौल ने सावरकर जी की शुरुआती मान्यताओं और भारत की आज़ादी की लड़ाई के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रोताओं, विनायक जी की पढ़ाई की शुरुआत भागुर शहर में हुई, जहां उनकी जबरदस्त बुद्धि जल्द ही सबसे अलग दिखने लगी। उनकी काबिलियत को पहचानते हुए उनका परिवार उन्हें बेहतर शिक्षा के मौके देने के लिए नासिक चला गया। शिवाजी हाई स्कूल में विनायक जी ने पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी बोलने की कला के लिए भी जाने जाने लगे, खासकर इतिहास और साहित्य में। शिवाजी महाराज की कहानियों और विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष ने उन पर गहरा असर डाला, जिससे उनमें राष्ट्रवाद की मजबूत भावना पैदा हुई। इन शुरुआती अनुभवों ने बाद में उनके क्रांतिकारी कामों को और साहित्यिक योगदान की नींव रखी। श्रोता, विनायक जी का नासिक से पुणे जाना उनकी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ था। फर्ग्यूसन कॉलेज में उन्होंने खुद को एक ऐसे माहौल में पाया जो बौद्धिक जिज्ञासा और ज़ोरदार राष्ट्रवादी चर्चाओं से भरा था। बाल गंगाधर तिलक जैसे जाने माने नेताओं के प्रभाव और भारत की आज़ादी के बारे में चल रही बहसों ने उनके नज़रिए पर गहरा असर डाला। इसी दौरान विनायक जी की राजनीतिक चेतना जागी, जिसने बाद में उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों की नींव रखी। श्रोताओं, सन 1906 में कानून की स्कॉलरशिप पर विनायक जी का लंदन जाना उनकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। राजनीतिक एक्टिविज्म की ऊर्जा से घिरे उन्होंने ग्रेजिन ज्वाइन किया और जल्द ही इंडिया हाउस के एक एक्टिव मेंबर बन गए, जो भारतीय राष्ट्रवादियों का एक संघ था। श्रोता, उन्होंने दूसरे क्रांतिकारियों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए और भारत की आज़ादी के लिए विचार और रणनीतियां साझा की। 20वीं सदी की शुरुआत के लंदन के जीवंत और अक्सर उथल पुथल भरे माहौल ने इस मकसद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया, जिससे आंदोलन में उनकी भविष्य की भूमिका तय हुई। श्रोताओं, विनायक जी पर बाल गंगाधर तिलक जी का गहरा असर पड़ा। उन्होंने स्वराज की मांग की और कल्चरल मोबिलाइजेशन का उपयोग किया। स्वदेशी आंदोलन ने आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ विरोध को प्रोत्साहित किया। श्रोताओं, विनायक जी का ग्यूसेप मैजिनी के यूरोपीय क्रांतिकारी साहित्य से परिचय उनके विचारों को विस्तृत करता है, जिसके अंतर्गत उन्होंने मैजिनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद किया ताकि राष्ट्रवादी आदर्शों को अपने देशवासियों के बीच फैलाया जा सके। श्रोताओं, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1905 में बंगाल के विभाजन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण मोड़ लिया, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े विरोध प्रदर्शन और स्वदेशी आंदोलन उत्पन्न हुए। विनायक जी ने देखा कि औपनिवेशिक नीतियों ने लोगों को एकजुट किया, जिससे उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों में बढ़ावा मिला। मदनलाल ढींगरा जैसे शहीदों से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी पुस्तक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में औपनिवेशिक दृष्टिकोण को चुनौती दी और 1857 के विद्रोह को एकजुट संघर्ष के रूप में पुनर्परिभाषित किया। विनायक जी ने अपने लेखन के जरिए भारतीय ऐतिहासिक चेतना को आकार देने और भविष्य के क्रांतिकारियों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रोताओं, सन 1904 में पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में स्टूडेंट रहते हुए वीर सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना

स्थापना की। ग्यूसेप मैजिनी के यंग इटली आंदोलन से प्रेरित होकर सावरकर भारतीयों में गणतंत्र और राष्ट्रवाद की भावना जगाना चाहते थे। ये सोसाइटी उन युवा क्रांतिकारियों के लिए एक मंच थी जो भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ाद कराना चाहते थे। इसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ आज़ादी नहीं था बल्कि देश को एक समान राष्ट्रीय पहचान के तहत एकजुट करना भी था। श्रोता, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से सशस्त्र प्रतिरोध के जरिए आज़ाद कराने के मकसद से की गई थी। विनायक दामोदर सावरकर जी के नेतृत्व में ये सोसाइटी युवा क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देने का केंद्र बन गई और उनमें निडरता और अपने मकसद के प्रति अटूट समर्पण की भावना भरी। श्रोताओं, सदस्य सक्रिय रूप से राष्ट्रवादी साहित्य फैलाते थे, पर्चों और गुप्त बैठकों का इस्तेमाल करके अपना संदेश फैलाते थे और समर्थक भर्ती करते थे। सीधे कार्रवाई के प्रति उनका समर्पण साहसी ऑपरेशनों में साफ दिखता था, जिनमें सबसे खास ब्रिटिश अधिकारी AMT जैक्सन की हत्या थी। इन गतिविधियों ने वैचारिक और व्यवहारिक दोनों तरीकों से औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देने के सोसाइटी के संकल्प को दिखाया। श्रोताओं, सन 1906 में सावरकर जी को लंदन में कानून की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली, जो उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ था जिसने उनके विचारों को और बढ़ाया। हालांकि उन्होंने बैरिस्टर बनने के इरादे से ग्रेज इन ज्वाइन किया था, लेकिन उनका असली जुनून भारत की आज़ादी की लड़ाई ही रहा। लंदन में उन्हें एक ऐसे विचारों वाले क्रांतिकारियों से जुड़ने और अपने मकसद को आगे बढ़ाने के नए मौके मिले। ये दौर उनकी रणनीतियों को बनाने और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ने के उनके पक्के इरादे को मजबूत करने में बहुत ज़रूरी था। श्रोता, वीर सावरकर जी को यूनाइटेड किंगडम से भारत लाए जाने से भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक अहम अध्याय शुरू हुई। उन पर साजिश, राजद्रोह और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोपों में मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष ने उनके लेखों और दूसरे क्रांतिकारियों के साथ उनके पत्राचार सहित काफ़ी सबूत पेश किए। 1911 में सावरकर जी को दोषी ठहराया गया और लगातार 2 उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जो कुल 50 साल जेल की सज़ा थी। इसके बाद उन्हें अंडमान द्वीप समूह की सेलुलर जेल में भेज दिया गया, जो ब्रिटिश सरकार का दूसरे राष्ट्रवादियों को एक कड़ी यातना देने का जो है वहाँ पे दी जाती थी। श्रोताओं, सेलुलर जेल, जिसे बदनाम रूप से काला पानी कहा जाता था, कैदियों को अकेलेपन में रखकर अलग थलग करने के लिए बनाया गया था, जिससे उनकी पीड़ा बढ़ जाती थी और उनका हौसला टूट जाता था। राजनीतिक कैदियों को लगातार कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जिसमें थका देने वाली शारीरिक मेहनत, बहुत कम और बेस्वाद खाना और लगभग कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जेल का दमनकारी माहौल किसी भी तरह के विरोध की उम्मीद को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था। फिर भी इन क्रूर परिस्थितियों के बीच सावरकर जैसे लोगों ने ज़बरदस्त हिम्मत दिखाई। जेल में बंद होने के बावजूद सावरकर जी ने अपनी बौद्धिक गतिविधियां जारी रखी, साथी कैदियों को प्रेरित किया और साहस और दृढ़ संकल्प की एक स्थायी विरासत छोड़ी। सेलुलर जेल की चार दीवारी के अंदर सावरकर जी ने ज़बरदस्त सहन शक्ति और रचनात्मकता दिखाई। लिखने की चीज़ें ना होने पर भी उन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं को याद कर लिया और यहाँ तक कि अपने विचारों को जेल की दीवारों पर उकेर दिया। उनकी रचनाएं, जो बाद में कमला नाम से प्रकाशित हुई, उनमें आशा, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जैसे विषयों पर बात की गई थी। ये रचनाएं न केवल उनके अपने विचारों को व्यक्त करने का एक जरिया थी, बल्कि उन्होंने उनके साथी कैदियों को भी प्रेरित किया और आज़ादी की लड़ाई को भी बढ़ावा दिया। श्रोताओं, वीर सावरकर जी की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व के सिद्धांतों के चारों ओर केंद्रित है, जिसे उन्होंने 1923 में विस्तृत किया।

0: भारतीय राजनीतिक सोच को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। उनके विचारों ने हिंदुओं की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक एकता पर जोर दिया, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या RSS और बाद में भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठनों के लिए बुनियाद बनी। श्रोताओं, वीर सावरकर जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जो आज़ादी के लिए अपने अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे। श्रोताओं, एक लेखक के तौर पर उन्होंने भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया और हिंदुत्व की अवधारणा को सामने रखा, जिसका देश के सांस्कृतिक विमर्श पर गहरा असर पड़ा। जहाँ कई लोग सावरकर की देशभक्ति और दूरदर्शी विचारों के लिए उनकी तारीफ करते हैं, वहीं उनकी विरासत विवादों से भी घिरी रही है। भारत की पहचान को आकार देने में उनकी भूमिका पर बहसें आज भी जोरदार राय पर जो की जाती हैं। श्रोताओं, 26 फरवरी 1966 को सावरकर जी का निधन हुआ। तो श्रोता, हम बात कर रहे थे प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीर सावरकर जी के बारे में, और अब आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले सब ओड़ा वापस को रुगड़ करना धरा रे नका गे आम बोले रुगड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगरा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी गाँव बारे भक्तो तो घर आई में हमारे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है।
6: नितुम बुरन सिंह तामसोय अनिता तामसोय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुर मिनाइया यापा मैं रियल तपा मैं रियल वाह बेटा निका
7: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्यान हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने में पुरी उड़ी ने बागिया तो कि दोनों से आरती को लो पुलिस को लो इन्हें लड़ाई चलाओ तमे बुरुरम गया तब जाए तेरे काका बुंग हो उन्हें बुको को काको मेल में
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिने रो जिता हुरा रे मिने रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिटा हुरेन का अली आया नु तुम तेना मिल आप ही लेता ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: స్వయం కి కట్టుబడే భారతీయ సేన.
1: श्रोताओं, इस संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम विविधा में. और अब आइए बात करते हैं भारत के प्रसिद्ध कवियों, लेखकों और साहित्यकारों में से एक पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी के बारे में, जिनकी आज पुण्यतिथि है. श्रोताओं, उनका जन्म 13 फरवरी 1915 को मथुरा में हुआ था. पंडित गोपाल प्रसाद व्यास ब्रजभाषा के कवि, समीक्षक, व्याकरण, साहित्य शास्त्र, रस रीति, अलंकार, नायिका भेद और पिंगल के मर्मज्ञ के रूप में विख्याति प्राप्त हैं थे. पंडित जी हिंदी में व्यंग्य विनोद की नई धारा के जनक माने जाते हैं. पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी हास्य रस में पत्नीवाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं. वे सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, व्यंग्य विनोद के प्रतिष्ठा प्राप्त कवि एवं लेखक थे और हास्य रसावतार के नाम से प्रसिद्ध थे. उन्होंने अपनी विद्वता से हिंदी को समृद्ध किया था. साहित्य संदेश, आगरा, दैनिक हिंदुस्तान दिल्ली, राजस्थान पत्रिका जयपुर, सन्मार्ग कलकत्ता जैसी पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया तथा दैनिक विकासशील भारत आगरा के प्रधान संपादक के रूप पर भी गोपाल प्रसाद व्यास जी ने बहुत कार्य किया. स्तंभ लेखन में सन 1937 से अंतिम समय तक निरंतर संलग्न रहे. ब्रज साहित्य मंडल मथुरा के संस्थापक और मंत्री से लेकर अध्यक्ष तक का पद उन्होंने सुशोभित किया था. दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक और 35 वर्षों तक महामंत्री और अंत तक संरक्षक रहे. श्री पुरुषोत्तम हिंदी भवन न्यास समिति के संस्थापक, महामंत्री के पद तक जो है पद पर अंत तक कार्य करते रहे. लाल किले के राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और देश भर में होली के अवसर पर मूर्ख महासम्मेलनों के जन्मदाता और संचालक का कार्य बखूबी उन्होंने पूर्ण किया. पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी का निधन 28 मई सन 2005 को नई दिल्ली में हुआ. श्रोताओं, इसी के साथ ही अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का. तो इसी के साथ हमारा आज का विविधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म सलामी के इस गीत से।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और अब श्रोताओ, ये अगला गीत सुनते हैं उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है आपको पहले भी कहीं देखा है।

0: सर्विस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: और अब श्रोता, ये सुनते हैं अगला गीत, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है धड़कन।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: और अब श्रोताओं, आइए सुनते हैं अभिजीत और साथियों की आवाजों में फिल्म यस बॉस का ये गीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अपने रेडियो दोस्त उदय पान के साथ आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में फिल्म परदेश का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
0: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
0: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
0: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
0: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है, है ना, रजनी और गंधा
2: जी। चलिए श्रोताओं इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है
0: जी। दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प

0: कुछ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
1: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
0: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
1: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
0: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
1: जी।
0: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
1: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
0: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
1: भला वो और क्या बात है?
0: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
1: जी, ये बात तो है।
0: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
1: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं, इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
0: जी
1: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
0: जी,
1: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
0: जी जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परम वीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत

0: ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
0: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
2: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
3: बहन जी, डाकिया।
2: अच्छा, खोलते हैं भैया।
4: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
5: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
4: तो कोई बड़ा है घर में?
5: हाँ, घर पर माता जी है ना।
4: जी बुलाइए।
6: माँ।
2: हाँ।
6: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
2: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
4: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
2: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
6: माँ, माँ।
7: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
2: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
7: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
2: हाँ।
7: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
5: अरे वाह,
2: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
6: ऐसे नहीं, बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
7: अरे योगेंद्र।
2: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
7: हाँ माँ।
5: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से 3-3 फौजी होंगे।
2: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
5: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
0: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का

0: और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
1: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
0: अब युद्ध अवश्यम्भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
1: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
0: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
0: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
2: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
3: जी साहब।
2: चलो, हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
3: चलो साथियों।
0: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए

0: वे पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत चार पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
1: कालिका माता की जय।
2: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध

आप सुन रहे थे विज्ञान जगत कार्यक्रम, वाचन एवं सहयोग था बसंत कुमार का, प्रस्तुति प्रभु शरण की। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अगला कार्यक्रम जो हां रांची लेकर आएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार रांची। सुनने वाले सभी दोस्तों को रेणु
1: और सुनीता का
0: नमस्कार जोहार। सुनीता, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचार से।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: खुद को साबित करना छोड़े, आज पर ध्यान दें। हम सोचते हैं कि खुश रहने के लिए हमें और तेज दौड़ना है, बेहतर बनना है और दूसरों से आगे निकलना है।
1: लेकिन आपको लगता है क्या कि इस तरह से दौड़ते भागते हम बिल्कुल शांत रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को अंदर से साबित करें और खुद पे ध्यान दें। अपने काम को अगर हम पूरे मन से करते हैं तो तभी सही मायनों में हमारा जीवन जो है ना अर्थपूर्ण लगेगा।
0: सही कह रही हो सुनीता। खुशी बड़ी चीजों में नहीं मिलती बल्कि छोटे छोटे पलों में छिपी रहती है। छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज न करें, तब जीवन ज्यादा संतुलित और महसूस होने लगता है।
1: हाँ बिल्कुल। कहते हैं ना कि बड़ी खुशियों के पीछे भागने से अच्छा है कि हमारे आसपास जो छोटी छोटी खुशियां हमें मिलती है, जिन कामों को करके हमें खुशियां मिलती हैं, हम उन्हें समेटने और सहेजने की कोशिश करें तो हमारा जीवन बहुत ही खुशनुमा और शांतिपूर्वक व्यतीत होगा।
0: तो जीवन का यही सार है और जीवन के हर मोड़ पे आप अपने जीवन को
1: आगे बढ़ाते रहिए, खुशियों के साथ जीते चलिए।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जोहाना जी, कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। और रेणु जी, क्या बातें करें हम अपने श्रोताओं से, ये बताइए।
6: अरे भाई, पूरा झारखंड अभी तो क्या
5: गर्मी के मार में झुलस
6: रहा था, भीषण गर्मी से जूझ रहे झारखंड को। लेकिन कल मौसम ने थोड़ी राहत दी।
5: थोड़ी राहत कब हुई पता है? कल सवेरे से बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी थी क्योंकि बादल था। हाँ। और जिसकी वजह से मतलब सभी परेशान थे, लेकिन जब सेकेंड टाइम आया, सेकेंड हाफ आया, तो ठंडी हवा चलने लगी, उसके बाद मौसम थोड़ा सा सुकून देने वाला हुआ।
6: हाँ, जिससे बादल में दो डिग्री तक पारा जो है नीचे भी गिरा।
5: और अभी जो है ना, ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राज्य में 2 जून तक गर्मी से राहत मिलेगी। और बस अच्छी खबर यह है कि लू नहीं चलेगी। इधर जो भीषण लू चल रही थी ना, वो नहीं चलेगी।
6: और राज्य में गरज चमक के साथ जो है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है, आज मौसम विभाग का अनुमान है। कई जिलों में वज्रपात की प्रबल संभावना जताई गई है।
5: और एक बात और अपने श्रोताओं को बता दें कि मौसम विभाग ने ये अलर्ट किया है कि झारखंड से 2 टर्फ गुजर रहे हैं। ये उत्तरी बिहार से तेलंगाना तक और उत्तर प्रदेश से ओडिशा तक जा रहे हैं, जिसके चलते वज्रपात और तेज हवा चल रही है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। इसलिए आने वाले दिनों में थोड़ी सी लू से राहत रहेगी।
6: और इसके असर से झारखंड के पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में तेज हवाएं चल रही हैं।
5: और एक और अच्छी बात ये हो गई है कि इन दिनों में, मतलब अभी 2 जून तक, तापमान जो है ना थोड़ा कम रहेगा। अभी जो 40 पार जा रहा है, वो 33 से 36 डिग्री के बीच बने रहने की संभावना जताई गई है।
6: अच्छा, तो आज का हमको लगता है अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री
5: रहने की संभावना है। और आज की बात कर ले तो आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो वज्रपात अभी बहुत हो रहा है, इससे थोड़ा बचकर रहना है। और ऐसा अगर लगता है कि आपके शहर के लिए कोई ऐसा अलर्ट जारी किया गया है, तो उस दौरान अपने घर से बाहर ना निकलें।
6: ऐसे ही बहुत जरूरत हो तभी अपने घर से बाहर निकलिए।
5: हाँ, ऐसे मौसम में जबकि अलर्ट है मौसम विभाग का, वज्रपात का या भारी बारिश का, आंधी तूफान का, तो घर में रहना ही अच्छा होता है और फिर मौसम को एंजॉय करना भी अच्छा होता है।
6: कल शाम तो सही में अच्छा लग रहा था एकदम। हाँ। रांची में जो सूर्यास्त के समय था ना, आसमान पूरा एकदम गेरुआ रंग का।
5: हाँ, और एकदम ठंडी हवा चल रही थी। उस समय मैं भी बाहर थी, घर जा रही थी, तो मुझे गर्मी का एहसास नहीं हुआ। आज सुबह भी जब मैं आ रही थी ना, तो मौसम वैसा ही था। हालांकि अभी दिन चढ़ते थोड़ी धूप तो हो गई है, तो मौसम ऐसा ही मिला जुला रहेगा और ऐसे ही खूबसूरत सा बना रहे मौसम जैसा अभी है।
6: तो हवा के साथ
5: हम भी थोड़ा आनंद उठा लेते हैं इस गीत का।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: तो रेनु जी,
8: आज बहुत बहुत खास खास दिन भी है आज।
7: हाँ,
8: लेकिन आज सबसे अच्छी बात है और सबसे अच्छा दिन है कि आज ईद अल अजहा है।
7: हाँ, पाक त्योहार ईद उल अजहा के अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को दिली मुबारकबाद।
8: बिल्कुल, और यह त्यौहार जो है ना कुर्बानी का पर्व माना जाता है। यह पाक त्योहार हमें जीवन में त्याग और बलिदान की प्रेरणा देता है और यह

0: आगे वह महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो परिवार, समाज और देश की एकजुटता को कायम रख पाता है।
1: हाँ, तो क्यों ना आज इस पाक त्योहार के अवसर पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम कुर्बानी, मोहब्बत और सद्भाव का जज्बा बनाए रखेंगे और अपने राज्य और राष्ट्र की विविध सांस्कृतिक विरासत को कायम रखने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे।
0: एक बार फिर हमारे सभी श्रोताओं को पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से ईद उल अजहा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।

0: सुनीता बिल्कुल खास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि क्या है आज खास का दिन।
1: आज बेहद खास दिन है रेणु जी, आज है एक महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, समाज सुधारक और हिंदुत्व के प्रमुख विचारक वीर सावरकर की जयंती।
0: हाँ, आज ही के दिन 1883 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ, जो भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ जिन्होंने हिंदुत्व के हिंदू राष्ट्रवादी दर्शन को प्रतिपादित किया।
1: और इनके बारे में अगर हम बातें करें तो क्रांतिकारी संगठन इन्होंने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी और 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की।
0: वे हिंदू महासभा के एक प्रमुख व्यक्तित्व थे
1: और नासिक षड्यंत्र मामले में इन्हें अंग्रेजों द्वारा 50 साल के कठोर कारावास की सजा, जिसे काला पानी की सजा दी गई थी और उन्हें अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल भेजा गया था।
0: उन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने सशस्त्र क्रांति के लिए भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए में केंद्रीय भूमिका निभाई थी
1: और उन्होंने जेल में रहते हुए हिंदुत्व की विचारधारा को विकसित किया और मित्र मेला जैसे संगठनों की नींव रखी।
0: और वीर सावरकर एक वकील, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। उन्होंने भारत की एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए हिंदुत्व का शब्द गढ़ा
1: और सामाजिक सुधार में उन्होंने छुआछूत का विरोध किया और जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए कई कार्य किए।
0: उनके राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद, तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद, सार्वभौमिकता, व्यवहारवाद और यथार्थवाद के तत्व थे।
1: हाँ बिल्कुल, और ऐसे ही महान विभूतियों का ही उनकी ही देन है कि आज हमारा देश जो है ना वो बिल्कुल विश्व पटल पर विख्यात है और बहुत अच्छी विचारधारा के साथ इन्होंने जो भी संदेश और उपदेश दिए हैं उनका भी आज लोग सम्मान करते हैं। और बात अपने देश की हो रही हो तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है ना उनके ही अथक प्रयासों का परिणाम है कि आज हम भारत जैसे देश में रहते हैं और बहुत अभिमान के साथ रहते हैं और पूरी दुनिया में भारत विश्व पटल पर अपना एक स्थान रखता है और पूरी दुनिया के लोग जो है ना भारत को देखने आना चाहते हैं।
0: हाँ, हम लोगों के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है और उनसे हम लोग को प्रेरणा मिलती है।
1: हाँ।

0: आज के दिन, जानती है सुनीता?
1: आज के दिन की हम बात कर रहे हैं तो आज के दिन ही क्या होगा बताइए आप।
0: हाँ भाई, विश्व स्तर पर मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जा रहा है।
1: हाँ, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस और विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस आज हम मना रहे हैं। और इसको मनाने का उद्देश्य यह है कि महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और इसीलिए हर दिन, हर साल ये मनाया जाता है।
0: हर साल 28 मई को मनाया जाने वाला महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और उनके अधिकारों की रक्षा करना है।
1: और बात कर ले अगर हम मेंस्ट्रुएशन की, यानी मासिक धर्म की, तो आज भी इस रूढ़िवादी बहुत बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन समय बहुत बदल चुका है और लोगों को ये बताना जरूरी है कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इसको लेके कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी स्वच्छता का ख्याल रखना है, हाइजीन का ख्याल रखना है। और मुझे तो लगता है ना रेणु जी, लगता है क्या, आजकल ये तो सिलेबस में शामिल हो चुका है। बच्चों को छोटे समय से ही बच्चियों को इसके बारे में बताया जाता है।
0: कहा भी जाता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा की जानी चाहिए।
1: बिल्कुल, हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा की जाना चाहिए। और क्योंकि ये विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस जो हम मना रहे हैं, इसको मनाने का उद्देश्य ये है कि आज भी सुदूर गांवों में बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं जिनसे लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो शायद इन्हीं सब बातों को लेकर जो अवधारणाएं आज समाज में आज भी रह गई हैं, उन्हें दूर करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है।
0: और ये जो महिला, उस पे तो अभी हम लोग बातें करेंगे, और एक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस जो मनाए जा रहे हैं उसमें है सुरक्षित मातृत्व और प्रजनन अधिकारों का वकालत करना है। इसकी शुरुआत पहली बार 1987 में कोस्टा रिका में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान घोषित किया गया था।
1: और इस दिन का महत्व ये है कि महिलाओं को अपने शरीर और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े निर्णय लेने का पूरा अधिकार।

0: अधिकार है जिसे यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार कहा जाता है।
1: और महिलाओं के जैसे महिलाओं को खुलकर चर्चा करनी चाहिए स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, मासिक धर्म की स्वच्छता है और रजोनिवृत्ति पर खुलकर अपने परिवार से डॉक्टर से बात करनी चाहिए।
0: हाँ, और महिलाओं का स्वास्थ्य न केवल उनके अपने जीवन के लिए बल्कि पूरे परिवार और समाज के विकास के लिए भी अत्यंत जरूरी है, क्योंकि अगर महिलाएं स्वस्थ नहीं होंगी ना तो घर परिवार संभालना
1: हिल जाता है।
0: बिल्कुल, एक दिन भी अगर आप बीमार पड़ जाओ ना तो पूरा घर देखोगे परेशान रहता है कि अब काम कैसे होगा। तो बात काम की नहीं है, बात स्वास्थ्य की है, तो स्वस्थ रहना जरूरी है।
1: और भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। जननी सुरक्षा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, आयुष्मान भारत है, घर की समाज और परिवार की नींव है महिला, आप स्वस्थ हैं तब सब स्वस्थ और खुश है।
0: खुश है, बिल्कुल सही बात है। और बात कर रहे हैं हम आज के दिन की, तो आपने जब मैंने शुरू में ही कहा था ना कि आज भी समाज में कुछ रूढ़िवादिता है, मेंस्ट्रुएशन को लेके आज भी लोग किसी किसी समाज में आज भी छुआछूत की भावना रहती है, तो इन सब बंधनों को तोड़ना जरूरी है। ये सारे नियम पुराने हैं और ये बिल्कुल गलत धारणा को स्थापित करते हैं, इसलिए मुझे तो लगता है ना कि
1: साफ सफाई पर ध्यान दीजिए,
0: बस थोड़ा हाइजीन पे ध्यान दीजिए और जागरूक रहिए, और जो छोटी बच्चियों है ना उनको भी क्लास 5 या 6 से इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब पढ़ाई होती है, स्कूल में बताया भी जाता है, तो आजकल के बच्चे अब नॉर्मल होते हैं, पहले की तरह परेशान नहीं होते, और वैसे भी ना आजकल के बच्चे कोई नियम मानने वाले नहीं है, इसलिए सारे नियम तोड़ के आराम से वो खुशी खुशी सभी चीजों को एंजॉय करते हैं।

0: इतिहास के पन्ने और पलटते हैं और जानते हैं आज के दिन घटित घटनाएं के बारे में।
1: हाँ हाँ, तो सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को बताएं कि आज एक दिन यानी 28 मई 2008 को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यरत 5 न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया और साथ ही विमान सेवा जेट एयरवेज को मध्य एशिया सर्वश्रेष्ठ चर्गो एयरलाइंस का पुरस्कार मिला।
0: और 2008 में ही नेपाल में 240 साल पुरानी राजशाही का अवसान हुआ। और इतिहास के पन्ने में और जानते हैं कि आज के दिन
1: अभी और भी इतिहास में कुछ कुछ बातें हैं, जैसे ये 2000 में आज ही के दिन भारत के राष्ट्रपति के आर नारायणन चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए 6 दिनों की राजकीय यात्रा पर पेंजिंग पहुंचे थे। और 28 मई 1998 को बलूचिस्तान की चंगाई पहाड़ियों पर पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए। परमाणु परीक्षण के विरोध में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने पाकिस्तान के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाया। और बात कर लेते हैं आज जन्म लेने वाले लोगों की।
0: हाँ, तो 1915 ईस्वी में गोपाल रामानुजन का जन्म हुआ, जो जाने माने समाज सेवक थे। 1931 ईस्वी में महंत अवैद्यनाथ और डीवी परुस्कर का जन्म हुआ। डीवी परुस्कर प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे।
1: हाँ, और 1915 में गोपाल रामानुजम भारतीय राजनीतिज्ञ, जाने माने समाज सेवक और भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के सह संस्थापक थे, उनका भी जन्म हुआ था।
0: और 1940 ईस्वी में प्रयाग शुक्ल का जन्म हुआ, जो हिंदी के कवि, कला समीक्षक, अनुवादक और कहानीकार हैं।
1: भारत के प्रथम लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष, उनका जन्म भी आज ही के दिन 1952 में हुआ था।
0: और 1969 ईस्वी में प्रतिमा भौमिक का जन्म हुआ।
1: और एक नजर डाल लेते हैं उन पर जो आज हमारे बीच नहीं रहे
0: हैं। तो देते हैं श्रद्धांजलि और उन महापुरुषों को जो आज हम सबके बीच नहीं है।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: 1954 ईस्वी में आज के दिन विजय सिंह पथिक का निधन हुआ, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
1: 2005 में आज ही के दिन गोपाल प्रसाद व्यास, भारत के प्रसिद्ध कवियों, लेखकों और साहित्यकारों में से एक थे, उनका निधन हुआ।
0: और 1964 ईस्वी में महबूब खान का निधन हुआ, जो भारतीय सिनेमा इतिहास के निर्माता निर्देशक थे।
1: और उनकी बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत मुख्य फिल्में हैं, जैसे मदर इंडिया, आन, अंदाज, अनमोल घड़ी, अमर, ऐसे ही न जाने कितने फिल्मों के वो निर्देशक रहे हैं। और उनके फिल्मों के गीत आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े होते हैं। एक बहुत ही पुराना खूबसूरत सा गीत हम सुनते हैं।

0: और इतनी बातें हो रही हैं रेणु जी, तो लोगों के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ी सी बातें हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भीषण गर्मी में ये सतर्क रहने की जरूरत है। और शरीर पर ना गर्मी का बहुत बुरा असर होता है, तो थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हम अपने श्रोताओं को बता दें कि किस तरह गर्मी हमारे शरीर पर असर डालती है और हमें कैसे उनसे बचना है।
1: जैसे हृदय पर जो है डिहाइड्रेशन के कारण खून गाढ़ा होने लगता है, ऐसे में जो लोग पहले से दिल की बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें हार्ट अटैक आने की खतरा काफी बढ़ जाता है।
0: और बात कर ले WHO की वार्निंग की कि तो इन्होंने कहा है कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार भीषण गर्मी और 45 डिग्री या उससे अधिक का तापमान शरीर पर खतरनाक असर डालता है। जैसा कि आपने बताया कि हृदय को प्रभावित करता है, वैसे ही त्वचा को भी प्रभावित करता है। 45 डिग्री में पसीना तेजी से सूखता है कि शरीर को ठंडक नहीं मिल पाती, लू लगने पर पसीना बंद हो जाता है और त्वचा गर्म हो जाती है।
1: और मस्तिष्क में मौजूद हाइपोथैलेमस शरीर को थर्मोस्टेट है जो तापमान को नियंत्रित करता है। लू लगने की स्थिति में यह थर्मोस्टेट काम करना बंद कर देता है, जिससे दिमागी संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है।
0: गर्मी की वजह से शरीर का शायद ही कोई हिस्सा है जो प्रभावित ना होता हो। बात कर ले फेफड़े की, तो गर्म और शुष्क हवा फेफड़ों के रास्तों को सिकुड़ सकती है, जिससे अस्थमा या सांस के मरीजों की तकलीफ बहुत बढ़ जाती है।
1: और मांसपेशियों की बात करें तो पसीने के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स निकलने से मांसपेशियों में ऐंठन होती है।
0: और पसीने के रूप में शरीर का ज्यादातर पानी बह जाता है, तो गुर्दों के पास छानने के लिए पर्याप्त लिक्विड नहीं बचता है। लंबे समय तक पानी न मिलने के कारण भीषण गर्मी में गुर्दे काम करना बंद कर सकते हैं। तो ये तो हो गई गर्मी का शरीर पर हमारे असर, लेकिन इससे बचने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। गर्मी अगर है तो लिक्विड डाइट खाए, ठंडे चीजों का सेवन करे, दही छाछ मट्ठा सत्तू इन सब चीजों को अगर आप
1: नारियल पानी,
0: हाँ मतलब हमारा जो देसी चीज है हाँ, वो बहुत पर्याप्त है।
1: और कुछ नहीं तो ये घर से जीरा पीसकर और सौंफ और मिश्री पीस के रखें, और थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, और हल्का चीनी या मिश्री में बना के पीजिए, बहुत ही अच्छा, पेट के लिए बहुत अच्छा है।
0: कहते हैं ना कि भगवान ने हर मौसम के अनुसार हमें खाने के लिए बहुत कुछ दिया है, जिनसे उस मौसम में हम सुरक्षित रह सकते हैं। अभी कच्चा आम केरी आ रहा है, बादाम भी आ रहा है, लेकिन केरी जो आ रही है उसका आम पक्का बना पीजिए, आपका शरीर भी ठंडा रहेगा, आपके शरीर में पानी की कमी होगी। और घर से बाहर निकलते हैं ना तो अपने साथ पानी की बोतल, और कोशिश करिए तो इलेक्ट्रोल या ORS का कोई भी घोल या कुछ ऐसी चीजें, कुछ नहीं तो सत्तू घोल कर निकल सकते हैं। आप इन सब चीजों को अगर आप पीते हैं ना तो गर्मी से आप बच सकते हैं।
1: तो घर से निकल

0: उतरे पेट में पेट भरा होना चाहिए।
1: हाँ, बिल्कुल पानी भी पूरा भरा होना
0: जिससे
1: चाहिए,
0: वो पेट भरा होना चाहिए। और तो आप लोग स्वस्थ रहिएगा तभी हम लोग भी,
1: हाँ तभी हमें भी अच्छा लगता है ना। अगर आपको सुनने को मिले कि लू से पूरा शहर परेशान है, इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश हम अपने स्तर से कर सकते हैं कि जितना चाहें बच सकते हैं, और अपने शरीर की तासीर को ठंडा रखने की कोशिश करिए। दोनों टाइम नहाइए, और देखिए समय बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं है। चलते चलते एक अच्छी खबर दे देते हैं कि IPL में ना कल हमारे जो बहुत छोटे से महान क्रिकेटर अभी उभर कर आ रहे हैं बाबर सूर्यवंशी, उन्होंने गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतने छक्के कल उन्होंने मारे कि उनका रिकॉर्ड टूट गया, और हमें लगता है कि बहुत ही जल्द जो सूर्यवंशी है ना हमें इंडियन टीम में देखने को मिलेंगे। हम उनके सुखद और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। और इस कार्यक्रम से आज अब हमें जाने की इजाजत लेनी होगी क्योंकि समय बहुत कम है, और हम अपने श्रोताओं से कहते हैं नमस्कार जोहार,
0: और इस गाने का आनंद लेते हुए।
1: बिल्कुल, इस गाने का आनंद लेते हुए।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, नमस्कार। शुरुआत करते हैं फिल्म अभिमान के इस गीत से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत पर किया एसटी बर्मन ने। इस गीत को सुनना चाहा है डेहरी ओनसोन रोहतास बिहार से, सुरभि निधि विधि संगीता रौनक, ममता तनु शिप्रा मंदाकिनी और उनके ढेरों साथी। तो आइए आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म अभिमान से ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गाना आप श्रोताओं के नाम। अहमदाबाद से आभा, सरोज मनीष, साहिल ऋषिन, लोकेश और उनके ढेरों साथी, धुरवा से सरिता, सौम्या, खुशी, भोलू बाबू, टुक टुक, चेपाकला बड़का गांव से बाबूलाल ठाकुर, सविया ठाकुर, मंजू ठाकुर, विकास, आशा देवी, अनुराधा, रुक्मिणी, प्रियंका, दीपिका और घर के सारे सदस्य, आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म चुपके चुपके से। ये गाना लता मंगेशकर की आवाज है, शब्दों में पिरोया है आनंद बख्शी ने, संगीतवत किया HD बर्मन ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ಸ್ವಯಂ ನಿಧಿ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद. अगला गीत सुनना चाहा है पटना से अर्चित, मनीष, श्वेता और अनु. आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म मिली से ये गाना. आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की है, शब्दों में पिरोया है योगेश ने, संगीतवत किया एसटी परवन ने.

कार्यक्रम का अगला गाना आप श्रोताओं के नाम गया से विजया अमन प्रतिमा शैलेश गुड़िया खुशी और घर के सारे सदस्य, पटना से सुनीता इंदु उमंग अटल गगन मगन और घर के सारे सदस्य, नरकोपी बाजार नामपुम से नरकोपी बाजार से फैजुल आलम नौसाद आलम खुर्शीद आलम और गुड़िया और पप्पू, आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म आप आए बहार आई से ये गाना, मोहम्मद रफी की आवाज है।

चलते चलते कार्यक्रम का आखिरी गाना आप श्रोताओं के नाम। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाच, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, चांदनी नाच। ग्राम करीगरी से पवन कुमार गुप्ता, मुकेश गुप्ता, प्रवीण कुमार, जयंती कुमारी, संध्या कुमारी, निक्की, प्रिंस, मौसमी और घर के अन्य सदस्य। ग्राम मुरुबंदा से कृष्ण कुमार, मनोज कुमार, रीना, पिंकी, संजू, मंजू, सोनी, गीता, सीता और उनके सारे साथी। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म एक मुट्ठी आसमान से ये गाना। किशोर कुमार की आवाज़ है। इंदिवर ने इस गीत को लिखा, संगीतबद्ध किया मदन मोहन।

हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां।

इसी गीत के साथ फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद यही समाप्त होता है। नमस्कार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: बहनों, छोटी छोटी खुशियां हो तो जीने का सहारा बनती है, लेकिन ख्वाहिशों का क्या है, वो तो रोज बदलती है। और हम हर दिन चाहते हैं कि हमारी सखियां नित नई बदलती जाएं और रोज बढ़ती जाएं। तो कार्यक्रम गृहलक्ष्मी को आज लेकर हाजिर हैं, बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका, आप सबकी अपने ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और आशा है आप सभी बहनें स्वस्थ होंगी, प्रसन्न होंगी और अपने परिवार के साथ खुशियों भरे पल बिता रही होंगी। कार्यक्रम के सफर में आज मैं हूँ शिल्पी और आज हमारे साथ एक और भी सखी हैं।
1: बहनों, मैं हूँ रानी और हम दोनों हाजिर हैं कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में कुछ ऐसी बातों जानकारियों के साथ जो हमारे जीवन से जुड़ी हैं, हमारे घर से जुड़ी हैं और कहीं ना कहीं हमारे आने वाले कल से भी जुड़ी हैं।
0: बिल्कुल बहनों, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक उसी तरह छोटी छोटी बचत से हम बड़े बदलाव ला सकते हैं अपने जीवन में। और इसके लिए जरूरी है कि छोटी छोटी लेकिन अच्छी आदतों को अपने साथ अपने जीवन में आजमाना और अपनाना।
1: बिल्कुल सही कहा शिल्पी, क्योंकि अच्छे विचार और अच्छी आदतें जीवन को सुंदर बना देती हैं बहनों। कभी एक मुस्कान घर का माहौल बदल देती है तो कभी छोटी सी समझदारी पूरे परिवार के लिए बड़ी राहत बन जाती है।
0: बिल्कुल, और रानी ने इसलिए बात कही आपसे कि रानी हर बात पे मुस्कुराती है। सखियों, आपको मैं बता दूं, और घर को संवारने में महिलाओं की छोटी छोटी कोशिशें कितनी बड़ी भूमिका निभाती है ये हम सभी जानते हैं। कभी बचत के रूप में, कभी व्यवस्था के रूप में, तो कभी बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के रूप में।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शिल्पी, और मैं तो चाहूंगी कि आपके साथ साथ हमारी सखियां भी मुस्कुराएं।
0: बिल्कुल,
1: और यही छोटी छोटी आदतें हमारे आने वाले कल को भी सुंदर बनाती हैं बहनों। जैसे घर में हर चीज का सही उपयोग, जरूरत के अनुसार खर्च और संसाधनों को संभाल कर रखना।
0: बिल्कुल, और आज के समय में जब बिजली, पानी और ईंधन की बढ़ती खपत हमारे पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए चुनौती बनती जा रही है बहनों, तब एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा। ऊर्जा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सभी हमारे जीवन को आसान बनाते हैं बहनों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग भविष्य में कितनी बड़ी समस्या बन सकती है?
0: बहुत गंभीर बात रानी तुमने कही, इसलिए आज आवश्यकता है कि हम ऊर्जा की बचत को केवल खर्च कम करने का तरीका न समझे बहनों, बल्कि इसे अपनी जिम्मेदारी भी माने।
1: हाँ, और आप सब यानी घर की महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं। यदि वे चाहें तो घर में ऊर्जा बचत की आदत आसानी से विकसित की जा सकती है। जैसे,
0: और बहुत छोटे छोटे रूप में, जैसे कि आवश्यकता न होने पर पंखे, लाइट, बिजली के उपकरण को बंद कर दें, एलईडी बल्ब का उपयोग करना और दिन के समय प्राकृतिक रोशनी का अधिक उपयोग करना। और बहनों, ये छोटी छोटी आदतें तो

0: हैं, लेकिन बड़ी मतलब समस्या बन जाती है जब हम अगर हमारे घर में बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, तब पता चलता है कि भाई हमने क्यों बेवजह के बिजली जला दी है।
1: बिल्कुल, खाना बनाते समय गैस का सही इस्तेमाल करना, पानी और बिजली दोनों की फिजूल खर्ची रोकना, ये छोटे छोटे कदम न केवल पैसे की बचत करते हैं बहनों, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: बिल्कुल बहनों, जरा सोचिए कि अगर हर घर एक छोटी सी पहल करे तो कितनी ऊर्जा बचाई जा सकती है, और जब ऊर्जा बचेगी तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, जिससे आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है उसको एक बेहतर जीवन मिल सकता है।
1: बिल्कुल, और जब बात घर परिवार के भविष्य की हो तो महिलाएं सबसे पहले आगे आती है ना शिल्पी?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: घर में सुख समृद्धि बचत के साथ साथ समझदारी से भी आती है बहनों, और घर को संभालते संभालते महिलाएं जाने अनजाने कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा जाती हैं।
0: बहुत सही बात, और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर समझदारी से पूरा घर व्यवस्थित बना देती हैं, और ये समझदारी तब और सुंदर लगती है जब हम घर में बिजली, पानी और रसोई गैस जैसे चीजों को सोच समझकर हम उपयोग करते हैं। आखिर संसाधन जितने बचेंगे, हमारा भविष्य उतना ही सुरक्षित और सुंदर बनेगा।
1: बिल्कुल सही कहा शिल्पी, क्योंकि समझदारी वही है जहाँ हम अपने आज को भी बेहतर रखें और आने वाले कल का भी ध्यान रखें,
0: और यही सोच हर घर को और मजबूत बनाती है, जहाँ छोटी छोटी सावधानियाँ बड़े सपनों को सुरक्षित करती है।
1: बिल्कुल सही, याद रखें बहनों, ऊर्जा की बचत करना हमारी जरूरत ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है, ताकि हमारा भविष्य सुंदर और सुरक्षित बन सके।
0: बिल्कुल रानी, और तुमने जिम्मेदारी की बात कही तो एक जिम्मेदारी और है कि हम अपनी सखियों को ले चलते हैं संगीत की दुनिया में।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों, लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 बन जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
6: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: पर्सनल लोन ऑफर
8: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
7: फ्री ट्रिप टू दुबई,
8: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
9: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
8: तो क्या करूं?
9: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
8: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
9: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
10: बहनों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और आज मैं हूँ शिल्पी और हमारे साथ हैं
11: बहनों, मैं हूँ रानी। और अब आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता, महिला पर्यटकों के लिए कैसे सुरक्षित हो पर्यटन, इस विषय पर आज हमें जानकारी दे रही हैं मीना सिन्हा और इनसे बात कर रही हैं रेडियो सखी शिल्पी।
12: तैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर बेहद लोकप्रिय है और जब बात हम पर्यटन की करते हों तो याद आ ही जाती है। सखियों, गर्मी की छुट्टी में घूमना फिरना, नई जगहें देखना और नई संस्कृति को जानना हर किसी को पसंद है। लेकिन यात्रा केवल आनंद का विषय नहीं बल्कि सुरक्षा और सतर्कता का विषय है। सुरक्षित वातावरण, सही जानकारी और जागरूकता महिलाओं की यात्रा को न केवल आसान बनाती है बल्कि यादगार भी बनाती है। इस महत्वपूर्ण विषय पर हम जानेंगे कुछ खास बातें आज अपने मेहमान से। आप हैं मीनू मीना सिन्हा, वरिष्ठ कवित्री हैं, साथ ही साथ अपना देश घूमने का शौक भी रखती हैं और फिर उसे अपनी कविताओं में ढालती हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। नमस्कार।
13: नमस्कार शिल्पी जी।
12: मैम, सबसे पहला सवाल है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन क्यों जरूरी है?
13: इस प्रश्न के उत्तर में शिल्पी जी, मैं यह कहना चाहूंगी कि पर्यटन केवल घूमने फिरने का माध्यम नहीं है बल्कि ज्ञान, आत्मविश्वास और अनुभव तथा मानसिक प्रसन्नता का भी स्रोत है। नई जगहों को देखना, विभिन्न संस्कृतियों को समझना और प्रकृति के निकट जाना मनुष्य के व्यक्तित्व को व्यापक बनाता है। आज महिलाएं शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में उनका स्वतंत्र रूप से यात्रा करना भी स्वाभाविक एवं आवश्यक है। किंतु प्रश्न यह उठता है शिल्पी जी कि क्या महिलाएं हर स्थान पर स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं?
3: बिल्कुल।
13: दुर्भाग्य से आज भी अनेक महिलाएं यात्रा के दौरान असुरक्षा, छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार, धोखाधड़ी और मानसिक भय जैसी समस्याओं का सामना करती हैं। यही कारण है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन आज समय की बड़ी आवश्यकता बन गया है। वास्तव में किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वहाँ महिलाएं कितनी स्वतंत्र और सुरक्षित हैं। यदि महिलाएं निर्भय होकर यात्रा कर सकें, तो यह केवल उनकी जीत नहीं होगी बल्कि पूरे समाज की प्रगति होगी।
3: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैम, कोई महिला अकेले अगर यात्रा करें तो किन किन सावधानियों को अपनाना चाहिए?
13: जी शिल्पी जी, ये आपका प्रश्न सावधानियों के विषय में प्रासंगिक है। जब हम अकेले यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ी सी समझदारी हमारी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बना सकती है।
3: जी,
13: और यह सबसे पहली सावधानी है यात्रा की योजना, पहले ही पूरी योजना बना लेनी चाहिए। जिस स्थान पर जाना हो वहाँ की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। वहाँ का मौसम, स्थानीय भाषा, परिवहन व्यवस्था, होटल तथा आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी होने से हम अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं। और देखिए, यात्रा के दौरान हमेशा विश्वसनीय साधनों का ही उपयोग करना चाहिए। चाहे हम होटल, टैक्सी या वाहन की बुकिंग कर रहे हों, हमेशा अधिकृत और भरोसेमंद माध्यमों से करें।
3: बिल्कुल।
13: अनजान व्यक्तियों पर तुरंत विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अपनी व्यक्तिगत जानकारी भी किसी से साझा करने में बचना चाहिए।
3: जी मैम, डिजिटल सुरक्षा यात्रा में कैसे मदद करती है, इसके बारे में बताइए हमारे श्रोता सखियों को।
13: जी बता रही हूँ, वर्तमान समय डिजिटल युग का समय है
3: जी।
13: है ना कल्पी जी?
3: बिल्कुल।
13: तो आज सब कुछ डिजिटल ही हो गया है। अब भी हम यात्रा की योजना बनाने से लेकर टिकट बुक करने, होटल आरक्षित करने, ऑनलाइन भुगतान करने, गंतव्य तक पहुंचने में मोबाइल फोन और इंटरनेट की महत्वपूर्ण भूमिका हम देख रहे हैं। तकनीक ने यात्राओं को सुविधाजनक और तेज बनाया है। इस कारण डिजिटल सुरक्षा का महत्व बढ़ गया है। अब हम ये सारे बुकिंग्स मोबाइल ऐप और वेबसाइटों के माध्यमों से करते हैं। डिजिटल सुरक्षा हमें फर्जी वेबसाइटों और धोखाधड़ी से बचाती है। अधिकृत प्लेटफॉर्म से यदि हम उपयोग करते हैं उनका, तो यह आर्थिक नुकसान की संभावना बहुत कम हो जाती है। हमारे यात्रा के दौरान मोबाइल फोन एक सुरक्षा साथी की तरह काम करता है। जीपीएस और मैप की सहायता से लोग सही रास्ता खोज सकते हैं। अनजान स्थानों में

0: में देखते हैं, लड़कों की तुलना में लड़कियों की यात्राओं को लेकर हर हमेशा आशंकाएं व्यक्त की जाती है। सावधानी आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक भय और रोक तो महिलाओं के आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। परिवार को चाहिए कि वे बेटियों और महिलाओं पर विश्वास करें, उन्हें सही मार्गदर्शन दें और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करें। परिवार महिलाओं को यात्रा संबंधी आवश्यक जानकारी, डिजिटल सुरक्षा, आपातकालीन सहायता और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक कर सकता है। नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए। जब हम यात्रा कर रहे हों, महिलाएं यात्रा कर रही हैं, आवश्यक नंबर उपलब्ध कराए जाएं और भावनात्मक सहयोग तो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल
0: समाज की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाएं तो अनेक समस्याएं स्वतः ही कम हो जाती हैं। ये हम लोग देखते हैं दिनानुदिन, इधर उधर यात्रा के दौरान महिलाओं को घूरना, अनावश्यक टिप्पणी करना या असहज महसूस कराना केवल असभ्यता नहीं बल्कि असुरक्षा का कारण भी बनता है। समाज को यह समझना होगा कि महिलाओं का स्वतंत्र रूप से यात्रा करना उनका अधिकार है, कोई असामान्य बात यह नहीं है। स्थानीय नागरिक, होटल कर्मचारी, वाहन चालक और पर्यटन से जुड़े लोग यदि संवेदनशील और सहयोगी व्यवहार करें तो महिला यात्रियों का आत्मविश्वास बढ़ता है।
1: जी मैम, आप अलग अलग राज्यों में घूमती हैं, बहुत घूमने के शौकीन हैं, तो आप चलते चलते आप हमारी श्रोता सखियों से क्या कहना चाहेंगी ये बताइए।
0: चलते चलते मैं अपनी सभी सखियों से यही कहना चाहूंगी, जीवन एक यात्रा है और हर महिला को अपने सपनों के साथ आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है। यात्रा करें, दुनिया देखें, नए अनुभव प्राप्त करें, लेकिन हमेशा सजग और आत्मविश्वासी और सुरक्षित रहें। अपने भीतर के भय को अपने सपनों पर हावी न होने दें। सावधानी को अपनी शक्ति बनाइए, कमजोरी नहीं। डिजिटल सुरक्षा, आत्मरक्षा और जागरूकता, ये सारे सही निर्णय हमारे सबसे बड़े साथी हैं। परिवार और समाज का सहयोग महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे अधिक आवश्यक है स्वयं पर विश्वास। जब महिलाएं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती हैं, तो वे केवल अपनी राह नहीं बनाती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नए रास्ते खोलती हैं। याद रखिए, सुरक्षा केवल डर कर रुक जाने में नहीं, बल्कि समझदारी और साहस के साथ आगे बढ़ने में है। इसी संदेश के साथ आप सभी को सुरक्षित, सुखद और प्रेरणादायक यात्राओं की शुभकामनाएं। धन्यवाद शिल्पी जी।
1: बहुत अच्छे मैम, आपने बहुत सुंदर और रोचक अनुभव साझा किया हमारे साथ। सच हमारा देश ऐसा ही है, बहुत खूबसूरत। भारत की धरती रंग बिरंगी संस्कृति से सजी हुई है, तभी तो विविधताओं में एकता वाला भारत सबको अपनी ओर खींचता है। मैम, आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमारे कार्यक्रम के लिए दिया निकाला और अपने अच्छे अनुभव बताए कि कैसे पर्यटन सुरक्षित हो, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार, धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता, महिला पर्यटकों के लिए कैसे सुरक्षित हो पर्यटन, इस विषय पर। आज हमें जानकारी दे रही थी मीनू मीना सिन्हा और इनसे बातचीत कर रही थी आपकी रेडियो सखी शिल्पी।
3: और बहनों, इतनी खूबसूरत जानकारी के बाद अब ऐसा लगता है कि भाई पर्यटन तो हम करने अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम गीत के माध्यम से सैर तो जरूर कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: तो बहनों, अब पहाड़ों की दुनिया से निकलकर आते हैं अपने कार्यक्रम की ओर, बढ़ते हैं कुछ जानकारियों की ओर। और आज हम जानकारी आपसे साझा करेंगे महिला ई हार्ट योजना। तो बहनों, आज की महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपनी मेहनत और हुनर से परिवार की मजबूती भी बन रही हैं। आज महिलाएं घर की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ अपने हुनर को अपनी पहचान बना रही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा शिल्पी, कोई स्वादिष्ट अचार बनाती हैं, कोई सिलाई कढ़ाई में निपुण है, तो कोई हस्तशिल्प और सजावटी सामान तैयार करती हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है बहनों कि अब महिलाओं के इस हुनर को घर की चार दीवारी तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है,
0: क्योंकि अब समय बदल रहा है रानी और तकनीक ने नए रास्ते खोल दिए हैं। और इसी दिशा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए एक सुंदर पहल की गई है, महिला ई हार्ट योजना।
1: हाँ बहनों, महिला ई हार्ट योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक डायरेक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है,
0: जिसका उद्देश्य है बहनों के महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और एनजीओ को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को ऑनलाइन बेचने में मदद करने, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
1: हाँ बहनों, आसान शब्दों में महिला ई हाट योजना एक ऐसा ऑनलाइन मंच है जहां महिलाएं अपने बनाए हुए सामान जैसे कपड़े, हस्तशिल्प, घरेलू उत्पाद, अचार, पापड़, ज्वेलरी या अन्य चीजों को सीधे ग्राहकों तक पहुँचा सकती हैं।
0: बिल्कुल। और रानी, धीरे धीरे अब हमारे कार्यक्रम का जो समय है वो संपन्न होता है, तो हम फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ, बहनों से लेंगे इजाजत। लेकिन आज बता दें कि कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी वो नूतन प्रसाद की थी, और कार्यक्रम के सफर में हम दो सखियां, मैं शिल्पी
1: और मैं रानी, हमें दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
0: और जी रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओ आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
0: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
0: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
0: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
2: जी चलिए श्रोताओं इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
0: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है।
2: जी,
0: इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
0: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
2: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
0: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
2: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने।
0: जी,
2: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
0: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
2: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
0: भला वो और क्या बात है?
2: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
0: जी, ये बात तो है।
2: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
0: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
2: जी
0: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
2: जी,
0: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
2: जी अजीत जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
0: तो

0: और ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परम वीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आए और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
3: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
4: बहन जी, डाकिया।
3: अच्छा, खोलते हैं भैया।
5: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
6: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
5: तो कोई बड़ा है घर में?
6: हाँ, घर पर माता जी है ना।
5: जी बुलाइए।
7: माँ।
3: हाँ।
7: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
3: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
5: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
3: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखूं तो।
7: माँ, माँ,
8: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
3: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
8: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
3: हाँ।
8: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
7: अरे वाह,
3: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
7: ऐसे नहीं, बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
8: अरे योगेंद्र।
3: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
8: हाँ माँ।
9: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
3: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर। ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
9: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
2: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
1: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
2: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
1: अब युद्ध अवश्यम्भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
2: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह

0: अरूदी सुरंगें बिछा रखी थी।
1: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
0: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
1: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
2: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
3: जी साहब, जी साहब।
2: चलो, हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
3: चलो साथियों।
1: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हथगोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।
1: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
2: भारत माता की जय।
3: भारत माता की जय।
1: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
0: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे। उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
1: बाद में तत्कालीन सेनाध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
0: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: अभी आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu has urged the police in the country to become more citizen-centric and sensitive while dealing with people, especially women, the poor and children. President Murmu was addressing the gathering after conferring the prestigious President's Police Colour on the Sikkim police during Alankaran parade held in Gangtok.
3: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके. महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए. साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही. इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में
2: Meanwhile, Sikkim has been officially declared a fully literate state under the ULAS, Understanding of Lifelong Learning for All in Society initiative. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said that re-evaluation process will now begin after certain issues have come to light regarding the CBSE Class 12th examination evaluation process. Speaking to media after the meeting with CBSE officials in New Delhi, Mr. Pradhan said officials will ensure that no student query is left unresolved and accountability will be ensured at all levels. Taking responsibility for the discrepancies, the education minister said the issues will be rectified and appropriate solutions will be worked out.
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले.
4: चिल्ड्रन शुड रिसीव ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर मार्क्स थ्रू स्कैन कॉपीज. द आंसर शीट्स शुड रीच देम ट्रांसपेरेंटली. दिस इज अ प्रोविजन अंडर द ओएसएम सिस्टम. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री सीबीएसई हैज इम्प्लीमेंटेड दिस सिस्टम. सम डिस्क्रेपेंसीज हैव कम टू नोटिस इन इट. आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एंड इट विल बी करेक्टेड प्रॉपरली. वी विल मेक श्योर दैट नो जेन्युइन क्वेरी रेज्ड बाय एनी स्टूडेंट रिमेन्स अनआंसर्ड.
2: The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate CUET UG 2026 examinations. As per the NTA, examinations will now be conducted on the 31st of this month and the 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid ul Azha. NTA said admit cards for candidates appearing for the test on Sunday have been released and they can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. The admit card for the remaining candidates whose examination is being scheduled on the 6th and 7th of next month will be released soon. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah will submit his resignation to the governor this afternoon. State Parliamentary Affairs Minister H.K. Patil informed this while leaving the breakfast meeting called by Siddaramaiah. He said Siddaramaiah has been told by the Congress High Command to resign and accordingly he will submit his resignation at Lok Bhavan. He further informed that D.K. Shivakumar will take over as the Chief Minister. Bharatiya Janata Party BJP leader from Punjab, Kewal Singh Dhillon, has been appointed as the state president of the party's Punjab unit today. He has been given the charge of Punjab unit by the party's national president, Nitin Naveen. Iran's Revolutionary Guards today said they targeted a U.S. base this morning in retaliation to American strikes near Bandar Abbas Airport. Tehran did not disclose the location of the base that was attacked, but Kuwait, a U.S. ally, said earlier it was responding to hostile missile and drone attacks. Today is the birth anniversary of great nationalist and freedom fighter Vinayak Damodar Savarkar, popularly called Veer Savarkar. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah remembered the great leader on the occasion. The festival of sacrifice, Eid ul Azha or Bakrid, is being celebrated with religious fervor and gaiety in various parts of the country today. People offered prayers in Eidgahs and mosques this morning. Later, they exchanged Eid greetings. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi greeted the people on the occasion.

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। रांची पुलिस ने लापुंग से 10 लाख के इनामी नक्सली पीएलएफआई सुप्रीमो अमृत होरो को किया गिरफ्तार। रंगदारी और आगजनी के कई मामलों में था वांछित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को दिलाया शिकायतों के समाधान और जवाबदेही का भरोसा। कहा सीबीएसई 12वीं परीक्षा में अब शुरू होगी पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया। ट्रेनों की लेट लतीफी पर विधायक सरयू राय ने उठाया सवाल। टाटानगर रेलवे स्टेशन दौरे पर पहुंचे महाप्रबंधक ने दिया आश्वासन, पैसेंजर ट्रेनों को मिलेगी प्राथमिकता। रांची समेत कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज। राज्य में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 5 दिनों तक लू चलने की संभावना नहीं। और पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुमित अंतिल ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। भाला फेंक कर जीता स्वर्ण पदक। प्रवीण कुमार और दीप्ति जीवन जी को भी मिला गोल्ड मेडल। और अब समाचार विस्तार से। रांची पुलिस ने पीएलएफआई नक्सली संगठन के सुप्रीमो कमांडर अमृत होरो को लापुंग इलाके से गिरफ्तार किया है। अमृत होरो पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ रांची और खूंटी समेत कई इलाकों में रंगदारी, आगजनी और रेलवे व निर्माण परियोजनाओं में बाधा पहुंचाने के मामले दर्ज हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने विशेष टीम बनाकर देर रात कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस वर्ष करीब 17 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी और लगभग 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई, जिनमें करीब 40 करोड़ स्कैन पेज शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार सीबीएसई ने डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली लागू की है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और छात्र हित सुनिश्चित करना है। अब छात्र अपनी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं देख सकते हैं और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
1: कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, उसको इसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा, उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असामाधित नहीं छोड़ेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ क्वालिटेटिव एक विषय है। सीबीएसई ने बहुत सारे अच्छे एजेंसियों को भी, अभी आईबी को भी इन्वॉल्व किया है।
0: टाटानगर स्टेशन के दौरे पर पहुंचे दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन ने आश्वस्त किया कि कोल्हान क्षेत्र में पहले पैसेंजर ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद ही मालगाड़ियों को पास किया जाएगा।
2: वहां से एक इशू रेज किया गया था कि गुड्स ट्रेन को चक्रधरपुर डिवीजन में प्राथमिकता दी जा रही है और कोचिंग ट्रेन को रोककर गुड्स ट्रेन को आगे चलाया जा रहा है। तो हमने उनको ये बताया है कि इसके बारे में किसी भी तरह हालत में हम गुड्स ट्रेन, कोचिंग ट्रेन को रोक के गुड्स ट्रेन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर कोचिंग ट्रेन जा रही है तो कोचिंग ट्रेन ही आगे जाएगी।
0: वहीं विधायक सरयू राय और रेल यात्री संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने ट्रेनों की लगातार लेट लतीफी का मुद्दा उठाया। सरयू राय ने कई यात्री ट्रेनों के घंटों देरी से चलने का रिकॉर्ड जीएम के सामने रखा।
3: केवल एक ही मांग है कि जो ट्रेनें हैं वो समय पर चलें। फिर उन्होंने कहा कि हम लोगों की ये धारणा है कि जो यात्री गाड़ियां हैं उसे रोक करके और मालगाड़ियों को आगे बढ़ाया जाता है और ये लेट होने का बड़ा कारण है। मैंने कहा कि रेलवे को मालगाड़ी की ढुलाई से ना आमदनी होता है किराया, उससे अधिक नुकसान जनता का।
0: झारखंड मंत्रालय परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महनंद राम आत्माराम टेकरीवाल फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एम्बुलेंस स्वर्गीय आत्माराम टेकरीवाल की पुण्य स्मृति में दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की पहल समाज सेवा और जन कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण है। झारखंड अधिविद्य परिषद ने मदरसा परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य भर में परीक्षाएं 16 जून से 23 जून तक दो पालियों में आयोजित होंगी। परिषद ने मदरसा प्रधानों को निर्देश दिया है कि वे 8 जून से प्रवेश पत्र परिषद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएं। वहीं रोल शीट का वितरण 10 से 12 जून के बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के बाद 24 जून से 2 जुलाई तक संबंधित मदरसों में प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित होंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू की गई उज्ज्वला योजना ने धनबाद की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। धनबाद की रमा सिन्हा ने कहा कि इस योजना ने सिर्फ महिलाओं की सेहत और समय को नहीं बचाया है, बल्कि इससे पर्यावरण को भी काफी हद तक संरक्षण मिला।
4: 10.5 करोड़ महिलाओं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना का लाभ दिया है। आज महिलाएं उस धुएं से बच रही हैं, जो लकड़ियां जलता था, धुआं उठता था, उस धुएं से बच रही हैं। उसके बाद उनका स्वास्थ्य का ख्याल, धुएं से कई प्रकार की बीमारियां होती थी महिलाओं को।
0: ईद उल अजहा का त्यौहार आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई मंत्रियों व अन्य ने आज ईद उल अजहा के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा, यह त्यौहार समर्पण, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को बकरीद की बधाई दी। दुमका समेत पूरे संताल परगना में गर्मी बढ़ने के साथ सर्पदंश की घटनाओं में तेजी आई है। मई महीने के 26 दिनों में संताल परगना में सर्पदंश के 191 मामले सामने आए हैं, जिनमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। दुमका जिले में 26 दिनों के भीतर सर्पदंश की 31 घटनाएं दर्ज हुई, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं पाकुड़ जिले में 60 मामले अस्पतालों तक पहुंचे हैं। गोपी कांदर प्रखंड के रोला पहाड़ी गांव में करैत सांप के काटने से एक 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,70,000 रुपये प्रति किलो है। झारखंड में भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आज से अगले 5 दिनों तक कहीं भी लू चलने की संभावना नहीं है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि आने वाले दिनों में तेज हवा, आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। बेंगलुरु में 8वीं भारतीय ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक F64 श्रेणी में 2 बार के पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता। सुमित ने अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए 74.82 मीटर का थ्रो किया। उन्होंने वर्ष 2022 के हांगझोउ एशियाई पैरा खेलों में 73.29 मीटर का थ्रो किया था। महाराष्ट्र के संदीप सरगर ने 62.88 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता। राजस्थान के संदीप ने कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची पुलिस ने लापुंग से 10 लाख के इनामी नक्सली PLFI सुप्रीमो अमृत होरो को किया गिरफ्तार। रंगदारी और आगजनी के कई मामलों में था वांछित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को दिलाया शिकायतों के समाधान और जवाबदेही का भरोसा। कहा, CBSE 12वीं परीक्षा में अब शुरू होगी पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया। ट्रेनों की लेट लतीफी पर विधायक सरयू राय ने उठाया सवाल। टाटानगर रेलवे स्टेशन दौरे पर पहुंचे महाप्रबंधक ने दिया आश्वासन, पैसेंजर ट्रेनों को मिलेगी प्राथमिकता। रांची समेत कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज।

हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार हैं सिप्रा बोस, सुनते हैं दादरा।

अभी आप शिप्रा बोस से दादरा सुन रहे थे। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। इनसे सुनते हैं चंद गजलें।

मिताली सिंह के गाय से गजल के साथ सुगम संगीत यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार सुनेंगे।

0: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Spanish counterpart, Jose Manuel Alvarez, on the sidelines of the informal meeting of the EU Foreign Affairs Ministers, Gymnich, in Cyprus today. In a social media post, Dr. Jaishankar said the meeting involved discussions on the next steps for trade, technology, defence and people-to-people ties between India and Spain. Dr. Jaishankar also appreciated Mr. Alvarez's views on ongoing global and regional developments. The External Affairs Minister reached Cyprus today to take part in the meeting. India and China have reviewed the situation in border areas and expressed satisfaction with the progress made in maintaining peace and tranquility. The two countries reviewed the situation during the 35th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs, which was held in Beijing yesterday. The Ministry of External Affairs said the discussions were constructive and forward-looking. The two sides discussed issues pertaining to delimitation, border management, mechanism building, and cross-border cooperation. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has announced his resignation from the post. He will submit his resignation this afternoon. State Parliamentary Affairs Minister H.K. Patil informed about Mr. Siddaramaiah's decision after attending the breakfast meeting hosted by Mr. Siddaramaiah for his cabinet colleagues at the Chief Minister's residence today. Mr. Patil said the move came following directions from the Congress High Command. He also announced that Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar will take over as the new Chief Minister. Mr. D.K. Shivakumar was also present in the meeting. More from our correspondent.
1: The symbolic hug by Siddaramaiah and D.K. Shivakumar during the breakfast meeting today said it all. It drew curtain on the speculation about the resignation by Siddaramaiah. Chief Minister Office has informed that Siddaramaiah will go to Lok Bhavan at 2:30 p.m. today and address media persons at 3 p.m. In the absence of Governor, who is on tour, the resignation will be handed over to the Secretary. The longest serving Chief Minister, including a full 5 years term from 2013 to 18 and 3 years in this second term since May 2023, Siddaramaiah will hand over reins to D.K. Shivakumar finally for a remaining period of 2 years. Swearing in and cabinet reshuffle remains to be decided now. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
0: The Bharatiya Janata Party today announced the appointment of new state unit presidents for three states and national capital Delhi. BJP National President Nitin Naveen has appointed East Delhi MP and Union Minister Harsh Malhotra as the party's Delhi unit president. Dr. Archana Gupta has been appointed as Haryana BJP chief and Keval Singh Dhillon will be the new president of the Punjab BJP. Abhishek Dev Roy has been appointed as Tripura BJP president. The West Bengal government has intensified measures against illegal infiltration under its Detect, Delete, Deport policy. Our correspondent reports that infiltrators are being detained and deported to Bangladesh after completion of legal formalities. Officials said around 50 Bangladeshi nationals were reported at the Hakimpur checkpost in Swarupnagar of North 24 Barganas today, seeking to return home. Around 350 people are currently housed in three holding centres in the area awaiting deportation. Security and surveillance have also been strengthened in border areas to check illegal infiltration. In Bihar, 8 people were killed across the state following a wave of severe thunderstorms, lightning strikes and hailstorms. Chief Minister Samrat Chaudhary announced ex gratia compensation of 4 lakh rupees each to the next of kin of the deceased. Meanwhile, the India Meteorological Department, IMD, has issued red alert for severe heat wave conditions over eastern Madhya Pradesh and Vidarbha today. Heat wave conditions are also expected over Delhi, Chandigarh, Rajasthan, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Konkan, Goa, Odisha, Punjab, Telangana and Uttar Pradesh today. The Met Department further predicted heavy rainfall over parts of northeast India, Bihar, Tamil Nadu and Puducherry for the day. Today is the birth anniversary of great nationalist and freedom fighter Vinayak Damodar Savarkar. popularly called Veer Savarkar. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah remembered the great leader on the occasion. Prime Minister Modi in his message said the courage and patriotism of Veer Savarkar will always inspire people. Home Minister said, a fearless warrior of the freedom struggle, Veer Savarkar dedicated his entire life to the service of the motherland. The festival of sacrifice, Eid ul-Azha or Bakrid, is being celebrated with religious fervor and gaiety in various parts of the country today. People offered prayers in Eidgahs and mosques this morning. Later, they exchanged Eid greetings. Eid ul-Azha is celebrated to commemorate the willingness of Prophet Ibrahim to sacrifice his only son in obedience of God's command. In the national capital, main congregations were held at Jama Masjid, Fatehpuri Mosque and Shahi Eidgah. Reports of Eid prayer congregations are also pouring in from other parts of the country. Elaborate security arrangements have been made for the occasion. In West Bengal, lakhs of devotees offering prayers at mosques and Eidgahs. Our correspondent has the details.
2: In Kolkata, the Eid prayers were held at the Brigade Parade Ground instead of the traditional Red Road. At the historic Nakhoda Mosque, prayers were conducted in two sessions, ensuring roads remained clear. The state government has strictly enforced the old Calcutta High Court directive, urging peace and discipline during the festivities. Millions gathered at more than 5,000 mosques and prayer grounds in Murshidabad. In Malda, the state's second largest congregation took place at Sujapur's Noy Mauja Idga. Large gatherings were also reported in Nodia, North 24 Parganas and South 24 Parganas, with women joining prayers in many locations.
3: Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
0: Cities across Madhya Pradesh are celebrating Eid ul-Azha today in a peaceful and joyful atmosphere. We have a report.
4: In Bhopal, thousands gathered at the historic Tajul Masjid for special prayers. The Imam prayed for unity, brotherhood and progress in the country. A heartwarming scene came from Indore. Following a 50-year-old tradition, a Hindu family welcomed the city Qazi with a garland of flowers. They then took him to the Eidgah in a decorated carriage. In Gwalior, people from other faiths also gathered outside mosques to greet the Muslim community. Meanwhile, the Madhya Pradesh Waqf Board has issued important guidelines for the animal sacrifice. People have been asked not to post photos or videos of the sacrifice on social media so that the communal harmony is preserved. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
0: President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi greeted the people on the occasion. The fragile ceasefire between the United States and Iran has come under severe strain after both sides exchanged military strikes near the strategically important Strait of Hormuz. The U.S. military said it shot down four Iranian attack drones and struck a drone control station in Bandar Abbas. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps confirmed the strikes and said it retaliated by targeting an American military base as Kuwait, a U.S. ally, said. Earlier it was responding to hostile missile and drone attacks. In badminton, India enjoyed an impressive day at the Singapore Open today with Lakshya Sen, PV Sindhu, the men's doubles pair of Chirag Shetty and Satvik Sairaj Ranki Reddy, and the mixed doubles duo of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto all advancing to the quarterfinals. Sindhu defeated Japan's Riko Gunji in pre-quarterfinals of the women's singles round of 16. Lakshya sailed into the last eight after Thailand's world number two Kunlavut Viditsarn retired hurt just moments into their round of 16 clash. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu urges police forces to be more citizen-centric and sensitive towards vulnerable sections. Education Minister Dharmendra Pradhan assures resolution of all grievances of students regarding discrepancies in CBSE Class 12 examination evaluation process. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah announces resignation. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar set to take over. Fragile ceasefire between US and Iran under strain as both sides exchange fresh strikes near the strategically vital Strait of Hormuz. And in badminton, PV Sindhu and Lakshya Sen storm into singles quarterfinals of Singapore Open. With that, we end the midday news.
5: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
6: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
5: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
7: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियाँ सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
5: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
8: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
5: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमरीका और ईरान ने होर्मुज जलडम

0: अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिज सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के दो व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
2: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
3: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के से
1: दाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
4: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और

0: किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनके जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती। शुरुआत करते हैं भारतीय सेना को समर्पित इस गीत से।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।
3: दम्भ का स्तंभ खंडम धम त्रिशूल गाड़ के प्रलयंकारी गति से

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हौजी भाइयों, आइए सुनते हैं आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज में फिल्म साजन की बाहों में से ये गाना। इस गीत को लिखा समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

इसी गीत के साथ फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। आईआईटी आईएसएम धनबाद के पैनमेन ऑडिटोरियम में बीसीसीएल के सीएसआर पहल के तहत अंडर प्रिविलेजेंट और प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन छात्रों के लिए स्टेम शिक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य बीसीसीएल क्षेत्र के जरूरतमंद और परियोजना प्रभावित छात्रों को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित की शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल और वैज्ञानिक शिक्षा बेहद जरूरी हो गई है। ऐसे में कार्यक्रम बच्चों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और तकनीकी समझ विकसित करने के में सहायक साबित होंगे। रांची पुलिस ने एक बड़े अभियान में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सरगना अमृत होरो को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस दल ने उसे गिरफ्तार किया। अमृत होरो रांची, खूंटी और आसपास के जिलों में जबरन वसूली और आपराधिक गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल था। पुलिस अन्य उग्रवादियों और संगठन के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अमृत होरो से पूछताछ कर रही है। गिरिडीह जिले के पचंबा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने छापेमारी कर दो नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया, जबकि एक महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि बोड़ो इलाके में नाबालिग लड़कियों को डरा धमका कर और मारपीट कर देह व्यापार कराया जा रहा था।
2: बोड़ो के एक घर में छापामारी किया गया, जहां से दो नाबालिग लड़की को बरामद किया गया और जिस महिला के द्वारा ये काम कराया जा रहा था उनको उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसमें और भी दो अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, कुल मिलाकर तीन गिरफ्तारी की गई है। उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और अगर इस तरह के घटना को अंजाम देने के लिए और भी लोगों की संलिप्तता इसमें पाई जाती है आगे, तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई।
1: धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत छाताबाद में बीती रात अवैध कोयला कारोबार में वर्चस्व को लेकर दो गुटों के बीच जमकर गोलीबारी की खबर है। देर रात हुई अंधाधुंध फायरिंग में दोनों पक्षों के तीन लोग गोली लगने से घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल एक युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर किया गया है। वहीं दूसरे व्यक्ति का इलाज निचितपुर स्थित एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। पुलिस ने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर छापेमारी की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर में शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद मनाया जा रहा है। इस्लाम धर्म के मानने वालों ने सुबह ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इधर जमशेदपुर में भी बकरीद ईद उल अजहा धार्मिक आस्था और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। बकरीद अल्लाह के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। आज जमशेदपुर के धटकीडीह समेत विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की। मौके पर उपस्थित नमाजी ने बताया कि पूरे देश में अमन शांति की दुआ की है।
3: ईद उल अजहा की नमाज बकरीद की नमाज हो, अमन शांति के साथ हमने अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया, दुआएं की और मुल्क में अमन अमान की दुआएं की हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की इबादतों को, कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
1: जामताड़ा के दुमका रोड स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास आज एक स्कूटी पर सवार तीन युवक डंपर की चपेट में आने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल युवकों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। दो अन्य गंभीर रूप से घायल युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने जामताड़ा दुमका सड़क मार्ग पर आवागमन अवरुद्ध कर दिया है। झारखंड स्टेट ओलंपियाड 2025 में सरायकेला खरसावां जिले के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT रांची के निर्देशक शशि रंजन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार राज्य स्तरीय मेधा सूची में जिले के 5 विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश मिश्रा ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए इसे जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काका मिघरा में शुरू होने वाले अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुरुषों के वर्ग में भारत को पुल ए में रखा गया है। पुल ए में मेजबान जापान, कोरिया, चीनी, ताइपे और कजाकिस्तान की टीमें शामिल हैं। भारत 29 मई को कजाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। इसके बाद 31 मई को जापान, 1 जून को कोरिया और 3 जून को चीनी ताइपे के खिलाफ मैच होंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है नॉन स्टॉप अंत्याक्षरी। इससे पहले सुनते हैं भारतीय सेना को समर्पित ये गीत।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान।

नॉन स्टॉप अंताक्षरी यहीं तक। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम रांची मेलोडीज। शुरुआत करते हैं फिल्म

श्री 420 के इस गाने से आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की है, शब्दों में पिरोया है शैलेंद्र ने, संगीत बत किया शंकर जय किशन ने।

शैलेंद्र का लिखा गाना सुनते हैं फिल्म बसंत बहार में। आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की है, संगीत वर्किया शंकर जय किशन ने।

आइए सुनते हैं बहारों के सपने से ये गाना। आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की है, शब्दों में पिरोया है मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है राहुल देव परमन ने।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रांची मेलोडीज। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं फिल्म चोरी चोरी से। आवाज लता मंगेशकर और मन्ना डे की है, शब्द रचना शैलेंद्र के, संगीत पद किया शंकर जय किशन ने।

आइए सुनते हैं फिल्म उजाला से ये गाना। आवाज लता मंगेशकर और मन्ना डे की है, बोल हसरत जयपुरी के, धुन बनाई है शंकर जय किशन।

कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म रात और दिन से, आवाजें लता मंगेशकर और मुन्ना डे की, बोल शैलेंद्र के, संगीत वत्किया शंकर जय किशन ने।

0: हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। आईआईटी आईएसएम धनबाद के पेनमैन ऑडिटोरियम में बीसीसीएल के सीएसआर पहल के तहत अंडर प्रिविलेजेंट और प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन छात्रों के लिए स्टेम शिक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य बीसीसीएल क्षेत्र के जरूरतमंद और परियोजना प्रभावित छात्रों को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग की बैनर तले 90 दिवसीय कानूनी जागरूकता आउटरीच कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हजारीबाग में यह कार्यक्रम प्रधान जिला न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग ध्रुवचंद्र मिश्रा के दिशा निर्देश में और सचिव डॉक्टर रवि प्रकाश तिवारी के देखरेख में चलाया जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के देवघर केंद्र में अब धर्म, अध्यात्म और जनजातीय अध्ययन से जुड़े कई नए कोर्स शुरू किए गए हैं। धर्म नगरी देवघर में छात्रों के लिए अब वैदिक अध्ययन, ज्योतिषाचार्य और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े विषयों में डिग्री हासिल करना आसान हो गया है। इग्नू के क्षेत्रीय निर्देशक अरविंद कुमार मनोज ने जानकारी दी कि संथाल परगना क्षेत्र के छात्रों को ध्यान में रखते हुए कई नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। राज्य भर में

0: शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद मनाया जा रहा है। इस्लाम धर्म के मानने वालों ने सुबह ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इधर जमशेदपुर में भी बकरीद ईद उल अजहा धार्मिक आस्था और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। बकरीद अल्लाह के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काकामिघारा में शुरू होने वाले अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुरुषों के वर्ग में भारत को पुल ए में रखा गया है। पुल ए में मेजबान जापान, कोरिया, चीनी ताइपे और कजाकिस्तान की टीमें शामिल हैं। भारत 29 मई को कजाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान जगत। वाचन एवं सहयोग वसंत कुमार। प्रस्तुति प्रभु शरण की।

नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित है हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज भी हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं रासायनिक पदार्थों से तैयार फलों को खाने से हमें क्यों बचना चाहिए इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं तंबाकू सेवन से होने वाले खतरे और इसके बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में। इसके बाद बारी होगी वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश के बारे में। इसके बाद बारी होती है खोज और आविष्कार की, जिसमें हम आपको आज जानकारी देंगे सोलर पैनल के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि रासायनिक पदार्थों से तैयार फलों को खाने से हमें क्यों बचना चाहिए इसके बारे में। तरबूज, ककड़ी, खीरा, इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे फल हैं जो इसी मौसम में मिलते हैं, गर्मी के मौसम में, जैसे कि आम, लीची, यहाँ तक कि हमें ऐसे फलों का भी सेवन करने के लिए मिलता है जिसे हम सिर्फ गर्मी के मौसम में ही खा सकते हैं। तो इन फलों को खाने से पहले हमें कई बार बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, लेकिन हम फलों को देखकर लालच में आ जाते हैं और फलों को किस तरीके से तैयार किया गया है, वो सेहतमंद है या नहीं है, इन बातों को दरकिनार करके हम सीधा फल को खाने के लिए खरीद लेते हैं और उसका सेवन भी करने लगते हैं। फल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉक्टर भी रोज फल खाने की सलाह देते हैं क्योंकि फलों में विटामिन, खनिज और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन आजकल बाजार में जल्दी मुनाफा कमाने की होड़ में कई व्यापारी फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने लगे हैं। इन फलों को रसायनों की मदद से जल्दी बड़ा और चमकदार बनाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक साबित हो रहा है। प्राकृतिक रूप से पके फल शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन जब इन्हें कैल्शियम कार्बाइड, एथिलीन गैस या अन्य रासायनिक पदार्थों की सहायता से पकाया जाता है या तैयार किया जाता है, तब ये स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाते हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा कि बाजार में आम, केला, पपीता और सेब जैसे फल बहुत चमकते हैं, एक जैसे रंग के दिखाई भी देते हैं, देखने में ये आकर्षक लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सुरक्षित भी हों। कई बार फलों को जल्दी पकाने के लिए जहरीले रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड रसायन के बारे में हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं और इसका उपयोग सबसे अधिक फलों

0: को तैयार करने के लिए किया जाता है। इससे निकलने वाली गैस फल को जल्दी पीला बना देती है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव काफी गंभीर हो सकते हैं। ऐसे फल खाने से सिरदर्द, पेट दर्द, उल्टी, आंखों में जलन, त्वचा संबंधी कई प्रकार की समस्याएं भी हो सकती हैं। लंबे समय तक इनका सेवन करने से लीवर और किडनी भी पूरे तरीके से प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों की अगर हम माने तो रसायनों से पकाए गए फलों में प्राकृतिक स्वाद और पोषण की कमी हो जाती है, यानी हम फल तो खा रहे हैं लेकिन शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल रहा है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ऐसे फल और भी ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। अब बात ये आती है कि इन फलों को हम पहचाने कैसे, कि ये कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए हैं। तो इन फलों को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि प्राकृतिक रूप से पके फल धीरे धीरे रंग बदलते हैं, जबकि रसायनों से पके फल बाहर से पूरी तरह पीले या लाल दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से कच्चे होते हैं। ऐसे फलों में प्राकृतिक खुशबू कम होती है। केले या आम पर काले धब्बे या असमान रंग दिखाई दे सकते हैं। फल जरूरत से ज्यादा चमकदार दिखे तो सावधान हो जाना चाहिए। काटने पर यदि फल का अंदरूनी हिस्सा सख्त या फीका लगे तो समझिए कि इसे कृत्रिम रूप से पकाया गया है। अब अगर आपने कृत्रिम रूप से पकाए गए फलों का सेवन कर लिया है और कुछ नुकसान आपको हो रहा है तो इनसे बचने की क्या प्रक्रिया है, क्या सावधानी है, ये जरूर याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमेशा मौसमी और ताजे फल को खरीदें, उसका ही सेवन करें। फल खरीदने के बाद अच्छी तरह से उसे धोएं, तभी उसका सेवन करें। कुछ समय के लिए गुनगुने पानी में रखने से भी रसायनों का जो असर है वो कम हो जाता है। स्थानीय किसानों या विश्वसनीय दुकानदारों से ही फल खरीदें और सेवन करें। जरूरत से ज्यादा चमकदार और बहुत जल्दी पके हुए फलों से बचना चाहिए और बच्चों को फल खिलाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से साफ करके धो लेना चाहिए, तभी उसका सेवन करना चाहिए। तो स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। थोड़ी सी लापरवाही हमें बहुत बड़ी बीमारी की तरफ ले जा सकती है, इसलिए हमें जागरूक बनना है और दूसरों को भी जागरूक करना होगा। यदि हम सुरक्षित और प्राकृतिक फलों का सेवन करेंगे तभी हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत रहेगा। तो रासायनिक पदार्थों से तैयार फलों को खाने से हमें क्यों बचना चाहिए, हमने इसके बारे में बातचीत कर ली। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भेंटवार्ता में आज तंबाकू सेवन से होने वाले खतरे और इससे बचाव के क्या उपाय हैं इसके बारे में। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर अभिजीत सिंह है जो कि इस विषय पर हमें जानकारी देंगे। और डॉक्टर अभिजीत सिंह समन्वयक नशा मुक्ति केंद्र CIP केंद्रीय मनुष्य चिकित्सक संस्थान रांची में कार्यरत हैं और ये संस्थान लगभग 107 साल पुरानी है जो कि इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही है और लोगों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक कर रही है। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: तो सर सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नशा कितना जरूरी हो जाता है इंसान के लिए और नशा के प्रति लोगों का जो रुझान है, उस तरफ जो खिंचाव है, वो क्यों होने लगता है, जबकि लोग ये जानते हैं कि नशा करना उनकी सेहत के लिए, उनकी मानसिक स्थिति के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति के लिए भी खराब है, बावजूद इसके लोग नशा करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है?
1: देखा जाए तो नशा एक तलब है। जब हमें तलब उठती है तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है, और इसलिए हम नशा की दुनिया में गिरते ही जाते हैं, इसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये तलब क्यों उठता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है जीवन में स्ट्रेस। जब परेशानियां आती हैं, जब स्ट्रेस आता है तो हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। हमें लगता है कि अगर हम नशा कर लेंगे तो कुछ समय तक नशे में रहेंगे और इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से निजात पा लेंगे, और इसी क्रम में हम जो है नशा के चंगुल में फंसते जाते हैं और तलब हमें लग जाता है।
0: यानी कि एक चीज से बाहर निकलने के लिए, मतलब स्ट्रेस हो गया या फिर कोई मानसिक परेशानी है या आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उससे बचने के लिए लोग थोड़ी देर के लिए, भूलने के लिए नशे की तरफ चले जाते हैं, लेकिन फंस जाते हैं उस तरफ। और ये एक बार दो बार हो गया तो समझ में आता है, लेकिन बार बार अगर उस चीज को रिपीटेशन हो रहा है तो फिर उस चीज को लेकर के जागरूक होना बहुत जरूरी है। और हर साल की तरह इस बार भी देखिए वर्ल्ड नो टोबैको डे जो कि 31 मई को मनाया जा रहा है पूरे विश्व भर में, इसके बावजूद लोग नशे की तरफ चले जा रहे हैं, इसका और जो मरने वाले लोगों की संख्या है या फिर इससे जो प्रभावित होने वाले लोगों की जो संख्या है वो भी आप दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई देख रहे हैं, तो कैसे इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए?
1: पहले तो मैं कुछ तत्वों के बारे बात करूंगा, कुछ डेटा के बारे बात करूंगा जो कि बहुत भयानक है। अगर देखा जाए तो आज हमारे देश में 10 में से 5 ऐसे लोग हैं जो नशा कर रहे हैं जिनमें मरने वाली संख्या 3 से ज्यादा है। तो अगर देखा जाए तो लोग 5 में से 3 आदमी

0: जो नशा कर रहे हैं वो मर रहे हैं। क्या कारण है इसके? सबसे बड़ा कारण नशा से मरने वाले लोगों की वो है कैंसर, जो कि माउथ कैंसर, लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर जैसी बीमारियां हैं। हम सबको पता है कि कैंसर के बाद जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाती है, कठिन हो जाती है, और कैंसर एक बहुत बड़ा इसका रीजन है।
1: जो लोग नशे के आदि हो गए उनको अगर जैसे पता है कि मुझे इस तरह की नशे के सेवन करने से बीमारी है या हो सकती है, तो उसके बावजूद वो नशा करते हैं क्योंकि आदत लग चुकी है, तो इस आदत को छोड़ने के लिए या फिर छुड़ाने के लिए क्या रास्ते हैं, क्या तरीके हैं जिनको लोगों को जानना चाहिए और उसके प्रति काम करना चाहिए, कैसे इसको किया जा सकता है?
0: जो सबसे पहला जो स्टेप हम लेते हैं वो है लोगों को जागरूक करना, ये बताना कि नशा आपके लिए खराब है। बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे संस्थान का और हमारा ये हमेशा से इच्छा रहती है कि हम लोगों को बताएं कि आप किस तरह से नशा से बच सकते हैं। तो उसके लिए कुछ तरीके हैं जिसमें हम कुछ थेरेपी का यूज़ करते हैं, कुछ काउंसलिंग देते हैं, कभी कभी हम दवा का भी इस्तेमाल करते हैं और उससे लोगों को नशा से बचाते हैं।
1: अभी तक के एक्सपीरियंस में नशा से बचने के लिए या फिर उससे छुटकारा पाने के लिए किस तरह के केसेस आए हैं और आपको सबसे खतरनाक या फिर खराब कह लें या फिर ऐसी स्थिति कह लें जिसमें आदमी उभर नहीं सकता है, ऐसे में आप कैसे उनको देखते हैं, क्या उनको सलाह देते हैं?
0: एक छोटा सा मैं केस आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जहां पर एक इंसान हमारे पास आए और जब हम उनका केस हिस्ट्री लिए तो हमें पता चला कि वो काफी तन्हा है, लोनली है, और उसके कारण उन्होंने शराब का नशा शुरू किया। शराब का नशा शुरू करने के बाद उनकी घर परिवार ने उनका साथ छोड़ दिया। अब क्योंकि साथ छोड़ दिया तो वो और अकेलापन हो गया और इसलिए वो और नशा लेने लगे। जब वो हमारे पास आए तो उनकी हालत इतनी बुरी थी कि वो अपना दिन भर का खाना भी नहीं खा पाते थे। जो खाना पेट में जाता था वो सही से पच नहीं पाता था, लीवर 75% तक डैमेज हो चुका था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया अपना ट्रीटमेंट, जहां पर मेडिसिन के साथ साथ थेरेपी के साथ साथ काउंसलिंग ये सब किया, और अभी काफी हद तक वो अच्छे हैं। पूरी तरह तो अच्छे नहीं हो पाए लेकिन हाँ, चलो कम से कम वो एक अच्छाई की तरफ उनका कदम जो है आगे बढ़ चुका है और उनका परिवार भी उनका साथ दे रहा है। एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, जो इस बार का थीम है हमारा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन अगेंस्ट ड्रग इंडस्ट्री, कि जो टोबैको इंडस्ट्री में जो बच्चों का योगदान है उसको रोकना बहुत जरूरी है। हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं, एक वैसे लोग जो ऑलरेडी नशा कर रहे हैं उनको तो रोकना हमारा फर्ज बनता ही है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे, इसको हम एडोलेसेंट बोलते हैं, वो नशा की तरफ झुक रहे हैं, वो तंबाकू की तरफ झुक रहे हैं, उनको रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर आज उनको रोक लेंगे तो कल वो उनका भविष्य अच्छा होगा और वो अच्छा इंसान की तरह निकल पाएंगे।
1: तो इसके लिए आपकी संस्थान या फिर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई स्कीम या ऐसा कोई कुछ कार्यक्रम जो जिसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह का कुछ कार्यक्रम चल रहा है जिसमें वो शामिल होकर अपना जो नशे की जो लत लगी है उससे बाहर आ सके।
0: हमारी संस्थान में हर बुधवार और शनिवार को एक क्लिनिक बैठता है जिसका नाम है टोबैको सिचुएशन क्लिनिक, TCC। इस क्लिनिक में हम निःशुल्क इलाज करते हैं और जो भी लोग तंबाकू, खैनी, गांजा, सिगरेट जैसी समस्या लेके हमारे पास आते हैं उनका हम निःशुल्क इलाज करते हैं। ये एक सरकारी कार्यक्रम है और इसमें मैं अभी तक अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि अगर हमारे पास 10 केस आया है तो 8 सक्सेस केस हम लेके बाहर निकले हैं।
1: तो बहुत अच्छी बात है।
0: तो इस तरह का जो कार्यक्रम है ये गवर्नमेंट काफी ज्यादा सपोर्ट करती है, और ये क्लिनिक बैठाने के बाद हमें पता चला कि हाँ, कुछ ना कुछ तो हम कर पा रहे हैं समाज के लिए।
1: अभी तक अगर देखा जाए तो इन सभी चीजों को जानने के बावजूद लोगों में नशे के प्रति जो खिंचाव है या रुझान है वो कम होने का नाम नहीं लेता। आपने जिन जिन चीजों का भी नाम लिया नशे के रूप में, उसके अलावा और भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनका सेवन लोग नशे के रूप में करते हैं, तो इन सभी चीजों का जो प्रभाव है बहुत ज्यादा असर तो नहीं करता है तुरंत में, लेकिन वो जो चीजें हैं जो अलग लेवल में नशा करने की चीजें हैं उनका असर तो सीधा मानसिक तौर पर होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है तो बाहर निकलने के लिए उसके पास क्या रास्ता है?
0: सबसे पहले जो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी नशा शुरू होता है वो छोटे नशे से शुरू होता है, जैसे सिगरेट का नशा हो गया, निकोटिन डिपेंडेंस उसको हम बोलते हैं, या फिर खैनी का नशा हुआ। ये नशा को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो ये आगे चल के बड़ा नशा, जैसे कि गांजा का नशा हो गया, ओपिओइड का नशा हो गया, ब्राउन शुगर का नशा हो गया, ये सबको हम बचा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो ऑलरेडी ब्राउन शुगर, कोकीन हीरोइन के नशा कर रहे हैं, सबसे पहले हमको उनके घर परिवारों को ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप उनको लेके हमारे पास आइए, क्योंकि इस पोजीशन पे आने के बाद, ये स्टेज में आने के बाद डायरेक्ट डॉक्टर का ही हेल्प चाहिए उनको, घर पे इलाज नहीं हो सकता। तो मेरा ये निवेदन है उन परिवारों से कि आप उनको लेके हमारे पास आइए और उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ शुरू होगा, जहाँ पर मेडिसिन और काउंसलिंग दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि घर वाले कैसे पहचाने कि मेरा बेटा या घर वाले जो भी इंसान है वो ब्राउन शुगर का नशा कर रहा है। तो इसका एक छोटा सा ये टेक्निक है कि अगर उसके व्यवहार में चेंजेस आ रहा है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो गया, अकेला अकेला रहता है, खाना कम खाता है, हर बात में गुस्सा करता है, तो आप समझ जाइए कि कोई ना कोई व्यवहार में चेंज हो रहा है और उसका दिनचर्या को नोटिस करना शुरू करिए। आप पाइएगा कि वो परिवार के लोगों से दूर रहने में ज्यादा अपने आप को सेफ महसूस करता। अगर वैसा कंडीशन है तो बिना लेट किए, बिना देर किए तुरंत हमारे पास लेके आइए, निशुल्क इलाज होगा और कहीं ना कहीं हम उसके जीवन को बचा पाएंगे।
1: युवाओं में खासकर, आज युवाओं में नशा का जो सेवन करने का जो चलन चल पड़ा है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है। पहले के जमाने में एक उम्र होने तक लोग नशा करते थे और एक नियमित संयमित तरीके से करते हैं, लेकिन आजकल बच्चों से ही ये चीज़ें शुरू हो जा रही है और युवाओं को खासकर ज़्यादा चपेट में ले रही है। तो युवाओं को इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नशे के आदि हो चुके हैं और जिनको देख कर या उनके साथ रह कर वो भी उसमें फंसते चले जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनको कैसे बचना चाहिए?
0: जो हमारे समाज में यंग एडल्ट हैं, जिसको आप युवा कह रहे हैं, ये दूसरे को देख के बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ये टीवी सीरियल में देख रहे हैं, पिक्चरों में देख रहे हैं, जहाँ पर हीरो हीरोइन जो नशा का सेवन कर रहे हैं और इसको देख के आकर्षित हो रहे हैं। अब इनको रोकना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसे लोग हमारे अस्पताल में आने से हिचकिचाते हैं, इसलिए हमने एक और नया प्रोग्राम शुरू किया है जहाँ पर हम स्कूल प्रोग्राम्स, स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके अवेयरनेस फैला रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जो हमारे मीडिया जो दिखा रहा है, जो मीडिया एक पिक्चर दिखा रहा है नशा का, वो पिक्चर कितना भयानक है, उसका जो असली चेहरा वो हम स्कूल जा जाके या कॉलेजेस जाके दिखा रहे हैं और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें सरकार हमको सहायता भी कर रही है और साथ साथ हमारे क्लिनिक के स्टाफ भी इसमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। और अभी जो नया डेटा आया उससे हमें ये पता चला है कि पिछले कुछ दशकों में हम सक्सेस पाया है और कहीं ना कहीं सक्सेस 55% से ज़्यादा है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेटा है। सो कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम और ये सब से हम जो है इस समस्या से निजात पाने में कुछ हद तक सक्षम है।
1: बहुत अच्छी बात है और इस तरह के कार्यक्रम चलते रहने चाहिए ताकि लोगों के बीच में जो नशे के प्रति जो रुझान है उसको कम किया जा सके। और कई बार ऐसा देखा जाता है ना कि लोग नशे के इतने आदि हो जाते हैं कि अगर ना मिले तो वो अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं या फिर उनकी जान पर बन आती है। तो नशा इतना भयावह चीज़ है, कई बार बहुत सारे घर इसके वजह से बर्बाद हो जाते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। अभी अगर देखा जाए तो हम अगर बाजार निकलें या फिर रास्ते में कहीं भी जाएं तो नशे के जो पदार्थ हैं, जो चीज़ें हैं, वो खुलेआम बिक रही हैं। तो लोग कहते हैं कि बिक रही है, मिल रही है, इसलिए हम खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो लोगों का इस तरह से कह देना और फिर नशे की तरफ चले जाना, ये कहीं ना कहीं खुद को खाई में लेकर डालने की जैसा है। तो ऐसी सूरत में अगर मिलने वाली जो चीज़ें हैं वो ना मिले तो सही बात है कि लोग नशा ना करें, लेकिन मिल रही है, बिक रही है मार्केट में, तो ऐसे कंडीशन में दोनों के बीच में कैसे गैप किया जाए कि लोग नशे से बच जाए और वो जो विक्रेता है तो उसे तो फायदा चाहिए भाई।
0: का जो ये सवाल है बहुत ही खूबसूरत है और हम जहां भी जाते हमें इस सवाल का सामना करना पड़ता है। इसके जवाब में मैं कहना चाहूंगा कि हमें एक चीज समझना है, डिमांड और सप्लाई का ग्राफ। जितना डिमांड बढ़ेगा सप्लाई उतना बढ़ेगा। हम जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, ये जो हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, TCC प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे हम डिमांड कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि अगर मैं आज आपको 1 लाख रुपए दूं और मैं बोलूं जाके आप एक स्कूटर खरीदिए, आप खरीदना चाहेंगे? नहीं खरीदना चाहेंगे, क्योंकि उसका डिमांड ही नहीं है। तो इस तरह से अगर हम डिमांड को कम कर देंगे, लोग खैनी गुटखा को लेंगे ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो जो दुकान है वो तो खुद ब खुद उनमें ताला लग जाएगा। तो हम डिमांड पे काम करते हैं, डिमांड पे काम करेंगे, हार्म रिडक्शन पे काम करेंगे, तो ऑब्वियसली सप्लाई जो है कहीं ना कहीं कम होगा
1: और लोग भी इस तरफ जाना कम करेंगे। इसके लिए लोगों को खुद सोचना पड़ेगा कि आप अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं या फिर सामने वाले के प्रोडक्ट की तरफ खींचे चले जाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
0: क्योंकि ये बहुत सही बात आपने कहा, जो प्रोडक्ट की तरफ वो खींचे चले जा रहे हैं, जो भी गुटखा खैनी ले रहे हैं, क्या कभी उन्होंने सोचा है कि इसका अंतिम स्टेज क्या होगा, अंतिम पड़ाव क्या होगा? मौत।
1: जी,
0: बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें देखा गया है कि जो लोग बहुत नशा कर रहे हैं वो आगे जाके सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रह पाता है, और सुसाइड केस भी बढ़ रहे हैं।
1: जी
0: तो इसलिए हमें लोगों को जागरूक

0: होना है, तो 80% केसेस में देखा गया है कि वो जो इम्प्रूवमेंट होता है, ऐसे केसेस हमारे क्लिनिक में आते हैं तो हम उनको एडमिट कर लेते हैं अपने पास, एडमिट करके प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में हम इलाज करते हैं और देखा गया है कि इम्प्रूवमेंट होता है डेफिनेटली। 100% में नहीं बोलता हूँ लेकिन 80% के आसपास तो इम्प्रूवमेंट होती ही है।
1: यानी कि अगर आप में चाह है दोबारा से खुद को खड़ा करके आगे बढ़ने की, नशे के प्रति आप लगाव को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर आपकी इसमें मदद कर सकते हैं।
0: वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह।
1: जी,
0: तो आप चाह लेके आइए, आप एक कदम में बढ़िए, हम एज अ डॉक्टर दो कदम आपके साथ।
1: तो अगर आप नशे के आदी हैं या फिर आप इसी से बाहर निकलना चाहते हैं, डॉक्टर से संपर्क करें पहले। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ट्रीटमेंट इसका बिल्कुल ही मुफ्त और सुचारू रूप से आपकी सेहत के लिए ध्यान में रख के किया जाता है, तो आप सबसे पहले यही काम करें कि डॉक्टर की सलाह जरूर लें, तभी सही तरीके से आप फिर से जिंदगी अपनी जीनी शुरू कर सकते हैं।
0: और बस मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि नशा का जो रास्ता है इसका अंत बहुत ही भयानक है, तो इस रास्ते पे अपना पहला कदम भी आप ना रखें। और अगर आपने पहला कदम गलती से रख दिया है दोस्तों के ग्रुप में आके या किसी कहने पे आके, तो तुरंत हमसे संपर्क करें। हर बुधवार हर शनिवार TCC क्लिनिक में हम मिलते हैं और निःशुल्क इलाज करते हैं, आप आइए हमारे पास। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हम सब एक साथ मिलके इस चीज से निजात पाया जा सकता है।
1: आप हमारे बीच में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हमारे श्रोताओं को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो अभी हम बात कर रहे थे भेंटवार्ता में तंबाकू सेवन से होने वाले खतरे और इससे बचाव के क्या उपाय हैं इसके बारे में। भेंटवार्ताकार के रूप में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अभिजीत सिंह। अब बारी है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, और आज हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश के बारे में। हम आपको बताते चलें कि हेनरी कैवेंडिश एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कई अद्भुत खोज किए थे। बहुत शांत, सरल और अध्ययनशील स्वभाव के व्यक्ति होने के साथ साथ इनकी खोजों ने आधुनिक विज्ञान की नींव को और मजबूत करने का काम किया। हेनरी कैवेंडिश का जन्म 10 अक्टूबर सन 1731 को इंग्लैंड के नीस शहर में हुआ था। एक समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखने के साथ साथ इनके पिता लॉर्ड चार्ल्स कैवेंडिश स्वयं भी विज्ञान में रुचि रखते थे, जिसका प्रभाव हेनरी पर बचपन से ही पड़ चुका था। हेनरी कैवेंडिश बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु बालक थे। इन्हें किताबें पढ़ना और नए प्रयोग करना काफी पसंद था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लंदन में प्राप्त की और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। हालांकि इन्होंने डिग्री पूरी नहीं की, लेकिन विज्ञान के प्रति इनका लगाव लगातार बढ़ता रहा। हेनरी कम लोगों से मिलते जुलते भी थे और अपना अधिक समय प्रयोगशाला में ही बिताते थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध खोज हाइड्रोजन गैस की खोज को मानी जाती है। वर्ष 1766 में इन्होंने एक विशेष गैस की पहचान की, जिसे इन्होंने ज्वलनशील वायु का नाम दिया। बाद में यही गैस हाइड्रोजन के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये विज्ञान जगत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। कैवेंडिश ने यह भी सिद्ध किया कि जब हाइड्रोजन गैस जलती है तो पानी बनता है। इस खोज ने ये समझने में मदद की कि पानी कोई तत्व नहीं बल्कि दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना एक यौगिक है। इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी के घनत्व को मापने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। इनका प्रसिद्ध कैवेंडिश प्रयोग आज भी विज्ञान की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रयोग के माध्यम से पृथ्वी के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल को समझने में काफी सहायता भी मिली। इनकी गणनाएं इतनी सटीक थी कि आज के आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से प्राप्त परिणाम भी उनके बहुत करीब पाए गए हैं। यह उनकी प्रतिभा और मेहनत का प्रमाण भी माना जाता है। हमेशा घंटों प्रयोगशाला में काम करते रहते हैं और हर छोटे से छोटे परिणाम को ध्यान पूर्वक लिखते रहते हैं। इनकी सादगी और समर्पण ही इनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। हेनरी कैवेंडिश के कार्यों ने रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों को नई दिशा देने का काम किया। इनकी खोजों के कारण वैज्ञानिकों को गैसों के गुणों को समझने में काफी मदद मिली। आज भी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में इनके प्रयोगों का अध्ययन कराया जाता है। हाइड्रोजन की खोज और पृथ्वी के घनत्व का मापन विज्ञान इतिहास की महान उपलब्धियों में गिना जाता है। महान वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश का विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हुए 24 फरवरी सन 1810 ईस्वी को निधन हो गया, लेकिन इनकी खोज और योगदान आज भी विज्ञान की दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो चुकी है। इन्होंने ये साबित कर दिया कि शांत स्वभाव और लगातार मेहनत से कोई भी व्यक्ति दुनिया को नई दिशा दे सकता है।

तो ये हमने आपको बता दिया वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिस के बारे में, और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सोलर पैनल के बारे में। तो वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो पूरे विश्व में अभी ऊर्जा संकट काफी गहरा हो चुका है और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे जूझता हुआ दिखाई देता है। और अगर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को इस ऊर्जा संकट से बचाना चाहते हैं तो हमें अब उस तरफ लौटना होगा जहां हमें सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाने की दिशा में कार्य करने का अवसर मिले और हम दुनिया को एक हरा भरा वातावरण दे सकें। इसके लिए ऐसे समय में सौर ऊर्जा यानी सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा हमारे लिए उम्मीद की नई किरण बनके सामने आई है। सोलर पैनल एक ऐसा उपकरण है जो सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। इसमें कई छोटे छोटे सोलर सेल लगे होते हैं। ये सेल सूर्य की किरणों को अवशोषित करके बिजली बनाने का काम करते हैं। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का धुआं, प्रदूषण या शोर उत्पन्न नहीं होता। यही कारण है कि सोलर ऊर्जा को स्वच्छ और हरित ऊर्जा कहा जाता है। आज बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। गांवों से लेकर शहरों तक हर जगह बिजली की आवश्यकता है, लेकिन कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सीमित है और इनके उपयोग से प्रदूषण भी काफी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सोलर पैनल एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है और भारत जैसे देश में जहां साल भर भरपूर धूप मिलती है वहां सौर ऊर्जा का उपयोग बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। वैसे सरकार भी लोगों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी और आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। तो जिन लोगों ने अब तक सोलर पैनल का इस्तेमाल नहीं किया है या नहीं लगवाए हैं वो इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और अपने घर पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। सोलर पैनल में लगे फोटोवोल्टिक सेल पर सूर्य की रोशनी पड़ते ही सक्रिय हो जाते हैं। ये सेल सूर्य की ऊर्जा को डायरेक्ट करंट यानी डीसी बिजली में बदलने का काम करते हैं। इसके बाद इन्वर्टर की सहायता से इसे बिजली में बदल दिया जाता है, जिससे घरों में पंखा, बल्ब, टीवी और अन्य उपकरण चलाए जा सकते हैं। कुछ सोलर सिस्टम बैटरी से भी जुड़े होते हैं, जिससे रात के समय भी बिजली का उपयोग किया जाता है। अब सोलर पैनल के क्या फायदे हैं तो हम आपको बताते चलें। सोलर पैनल के बहुत सारे फायदे हैं। ये प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है, बिजली का बिल आपका कम हो सकता है, इसके अलावा दूर दराज गाँव में भी आसानी से बिजली पहुंचाई जा सकती है और इसका रखरखाव अपेक्षाकृत बहुत कम है, यानी कि

नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित है हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज भी हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं रासायनिक पदार्थों से तैयार फलों को खाने से हमें क्यों बचना चाहिए इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं तंबाकू सेवन से होने वाले खतरे और इसके बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में। इसके बाद बारी होगी वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश के बारे में। इसके बाद बारी होती है खोज और आविष्कार की, जिसमें हम आपको आज जानकारी देंगे सोलर पैनल के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि रासायनिक पदार्थों से तैयार फलों को खाने से हमें क्यों बचना चाहिए इसके बारे में। तरबूज, ककड़ी, खीरा, इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे फल हैं जो इसी मौसम में मिलते हैं, गर्मी के मौसम में, जैसे कि आम, लीची, यहाँ तक कि हमें ऐसे फलों का भी सेवन करने के लिए मिलता है जिसे हम सिर्फ गर्मी के मौसम में ही खा सकते हैं। तो इन फलों को खाने से पहले हमें कई बार बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, लेकिन हम फलों को देखकर लालच में आ जाते हैं और फलों को किस तरीके से तैयार किया गया है, वो सेहतमंद है या नहीं है, इन बातों को दरकिनार करके हम सीधा फल को खाने के लिए खरीद लेते हैं और उसका सेवन भी करने लगते हैं। फल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉक्टर भी रोज फल खाने की सलाह देते हैं क्योंकि फलों में विटामिन, खनिज और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन आजकल बाजार में जल्दी मुनाफा कमाने की होड़ में कई व्यापारी फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने लगे हैं। इन फलों को रसायनों की मदद से जल्दी बड़ा और चमकदार बनाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक साबित हो रहा है। प्राकृतिक रूप से पके फल शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन जब इन्हें कैल्शियम कार्बाइड, एथिलीन गैस या अन्य रासायनिक पदार्थों की सहायता से पकाया जाता है या तैयार किया जाता है, तब ये स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाते हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा कि बाजार में आम, केला, पपीता और सेब जैसे फल बहुत चमकते हैं, एक जैसे रंग के दिखाई भी देते हैं, देखने में ये आकर्षक लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सुरक्षित भी हों। कई बार फलों को जल्दी पकाने के लिए जहरीले रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड रसायन के बारे में हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं और इसका उपयोग सबसे अधिक फलों को तैयार करने के लिए किया जाता है। इससे निकलने वाली गैस फल को जल्दी पीला बना देती है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव काफी गंभीर हो सकते हैं। ऐसे फल खाने से सिरदर्द, पेट दर्द, उल्टी, आंखों में जलन, त्वचा संबंधी कई प्रकार की समस्याएं भी हो सकती हैं। लंबे समय तक इनका सेवन करने से लीवर और किडनी भी पूरे तरीके से प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों की अगर हम माने तो रसायनों से पकाए गए फलों में प्राकृतिक स्वाद और पोषण की कमी हो जाती है, यानी हम फल तो खा रहे हैं लेकिन शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल रहा है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ऐसे फल और भी ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। अब बात ये आती है कि इन फलों को हम पहचाने कैसे, कि ये कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए हैं। तो इन फलों को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि प्राकृतिक रूप से पके फल धीरे धीरे रंग बदलते हैं, जबकि रसायनों से पके फल बाहर से पूरी तरह पीले या लाल दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से कच्चे होते हैं। ऐसे फलों में प्राकृतिक खुशबू कम होती है। केले या आम पर काले धब्बे या असमान रंग दिखाई दे सकते हैं। फल जरूरत से ज्यादा चमकदार दिखे तो सावधान हो जाना चाहिए। काटने पर यदि फल का अंदरूनी हिस्सा सख्त या फीका लगे तो समझिए कि इसे कृत्रिम रूप से पकाया गया है। अब अगर आपने कृत्रिम रूप से पकाए गए फलों का सेवन कर लिया है और कुछ

श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सांझ सरगम। सांझ सरगम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म आशिकी 2 के इस गीत के साथ।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म फना से। इसे गाया है शान और कैलाश खेर ने, संगीत जतिन ललित का है और बोल है प्रसून जोशी के।

0: इस गीत के साथ ही हमारा आज का एक कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी सिफारिशों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सौंप दी है। यह रिपोर्ट व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य देश भर में मुस्लिम महिलाओं के कानूनी, सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करना है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन प्रमंडल की ओर से आज हाथी पीड़ित ग्रामीणों के बीच मुआवजा राशि का वितरण किया गया। डीएफओ अविरूप सिन्हा के नेतृत्व में ससंगदा रेंज अंतर्गत भनगांव और नवागांव के ग्रामीणों को सहायता राशि प्रदान की गई। यह कार्यक्रम ससंगदा रेंज कार्यालय में आयोजित हुआ, जहां हाथियों के हमले में घर टूटने, फसल बर्बाद होने और जान माल की क्षति झेलने वाले ग्रामीणों को मुखिया लिपि मुंडा की मौजूदगी में वन विभाग के अधिकारियों ने चेक के माध्यम से राशि का भुगतान किया। जमशेदपुर में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने रात्रि गश्ती और टेंगो मोबाइल की निगरानी तेज कर दी है। इसी अभियान के तहत टेलको थाना पुलिस ने बंद घर में चोरी की कोशिश कर रहे एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पूछताछ में इन्होंने कई थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात कबूल की। खूंटी में ईद उल अजहा के मौके पर उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन नमाज अदा करने के बाद लोगों से गले मिले और खूंटी के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिठाई खिलाई। इस अवसर पर खूंटी उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन तथा एसपी ऋषभ गर्ग ने जिलेवासियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी समुदाय के सहयोग से ईद उल अजहा शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। इधर लोहरदगा जिले में भी मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा ईद उल अजहा शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर क्षेत्र के विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में निर्धारित समय पर मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा नमाज अदा की गई। लोहरदगा ईदगाह में पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने भी नमाज अदा की और लोगों को बकरीद की मुबारकबाद दी। मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से FM के 101.7 मेगा हर्ज पे। सांध्यकालीन सभा में मैं हूँ राधा, आप सबों के साथ। सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आइए सभा आरंभ करें। इससे पहले सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा पर हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। अब से थोड़ी देर बाद संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे युगल गीत। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धान फसल के लिए खेती की तैयारी पर इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। साथ ही लोकगीतों का आनंद लेंगे इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ होंगे ठाकुर चंद्र मुर्मू और आशामणि गोप। संध्या 6 बजे सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 6:02 पर आप सुनेंगे बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस पर चर्चा होगी। साथ ही आप सुनेंगे मिशन वात्सल्य योजना पर जानकारी और SD बर्मन के गाए चंद गीत। संध्या 6:30 पर सुनेंगे सांथाली कार्यक्रम। शाम के 6:55 पर हम चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप संध्या 7:00 सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद के साथ हम होंगे आपके साथ संध्या के 7:15 पर। रात्रि 8:00 सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे रात्रि के 8:45 पर। इसमें आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग के साथ हम होंगे आपके साथ रात्रि के 10:23 पर। रात्रि 11:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे और सभा समापन की घोषणा हम करेंगे रात्रि के 11:10 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र

से आज सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं युगल गीत। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम है मेला।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इस विराम के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम गुलदस्ता में पुनः एक बार आप सबों का स्वागत है। इस संदेश के पहले आप सुन रहे थे फिल्म अमरदीप का गीत, मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत दिया था श्री राम चंद्रन ने और फिल्म का नाम था अमरदीप। और इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में, फिल्म मेरे हमसफर का ये खूबसूरत सा गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और अभी इस कार्यक्रम का ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ों में गुलशन बाबरा के लिखे गीत को संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है निशान।

उस गीत के साथ ही श्रोताओं कार्यक्रम गुलदस्ता अब हम आपके संपन्न करते हैं। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम में युगल गीत। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान बाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, और इस कार्यक्रम के साथ होंगे ठाकुर चंद्र मुर्मू और आशामणि गोप।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को आशामणि गोपर
1: ठाकुर चंद्र मुर्मू का
0: जोहार। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। ठाकुर जी, आपका भी हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी हाँ
0: ठाकुर जी, प्रतिदिन की तरह आज हम कार्यक्रम में हमारे किसान भाई बहनों के बीच बहुत सी जानकारियों के साथ उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं धान फसल के लिए खेत की तैयारी। ठाकुर जी, इन दिनों हमारे किसान भाई बहन भी धान फसल के लिए खेत की तैयारी लगभग प्रारंभ कर चुके हैं। खरीफ फसलों में धान महत्वपूर्ण फसल है, जिसे मानसून के मौसम में बोया जाता है। धान की बुआई जून से जुलाई के महीने के बीच इसकी बुआई की जाती है। धान फसल की बुआई के लिए ठाकुर जी खेत की तैयारी बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमारे किसान भाई बहन खेत को खरपतवारों से मुक्त रखे तो वो ज़्यादा अच्छा है। खेत में खरपतवार होने से उसमें कीट पतंग वो रहते हैं, जिससे जो फसल की बुआई होती है उसके बाद उसको क्षति भी पहुंचाते हैं। और 2 से 3 बार अच्छी तरह खेत की गहरी जुताई करना बहुत जरूरी है। इससे जो मिट्टी है वो भी ढीला होता है, साथ ही जो हवा का संचार है वो भी अच्छा रहता है।
1: सही बात है आशा जी। अड़ी बस कथा किन लिए तो जहाँ लिखा नहीं तो किन लिए जनवा धन फसल के लिए खेत की तैयारी तो हसा सपड़ा मना के दौड़ी लगती कन गया चिकाते नहीं तो जहाँ हुड़ू बुन चाशिया उन्हें हुड़ू चाश जगह बद को निहती कम से कम बार दाव पे दाव गन सी लहुल लगती कना सी लहुल लिखान तो चेत चिका सी उल्टो लिखान तो चेत चिका चे लतार हसा को चितानो और जहाँ चितान रे हसा मेना उन्हें लतार हुआ इन साव सावते जहाँ हसा भीतर रे उनका तेजी को मेना को जहाँ अब फसल को नुकसान दाड़े उनको को हमको गुजुग हुआ और दूसरा लाभ नुआ मेना आछे जहाँ चांदो खुन तरस नामोआ नुआ रे हासा रे नाइट्रोजन नामा और ओना इदी करते हासा उपजो बिनाव दाड़े हुआ तो नो अनुकना जिनिस को करना चाहिए हासा सपड़ा दो अड़ी के लगती कन गया और इन साव सावते अब नेलमा जुदी जहाँ रे बुन रहोए चे तोड़ाए अब उना जगह को रे हम बेसें सील हुई जीवन ते जहाँ तीस जो ना अब तोड़ा बुन उचोगा तोड़ा बन उचो खान तो तोड़ा नपाय हुआ को आलो तोपागो उनकान जगह को रोहे लगती करना चे एर लगती करना माने हसा बेस पुरबुरी में और सावते हुई दाड़ा खान जहाँ अब हेड़े बन मेतागा करना हेड़े बखान लुबू को सावते मेसा करते बन तोड़ाए खान और मिद दिन जख तोड़ा बन तूदा अभी नपाय बन तूद दाड़ा।
0: बिल्कुल ठाकुर जी, और इसके साथ ही हमारे किसान भाई बहन यह भी ध्यान रखें कि बुआई से पहले बीज का बीजोपचार होना बहुत जरूरी है। अच्छे और स्वस्थ बीजों का ही प्रयोग करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका असर जो फसलों के उत्पादन पर पड़ता है।
1: सही कथा जी।
0: और इसके साथ ही जो मिट्टी की जांच है वो भी बहुत जरूरी है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: इससे यह पता चलता है कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी हो रही है।
1: चिकाते अभी बेस कथा किन लिया चे मतलब जहाँ हसा जाँच में तो अभी लगती कन गया नुआ को तो मड़ंग तेगे उन्हें जाँच लगती कना चिकाते उन्हें जाँच लेन खान तो ठीक हसा जाँच लेन खान तो और उन्हें अब चे पोषक तत्व रे कम चे बेसी मे नुआ को ठीक और उन हिसाब से अब रान दाड़े अब हसा रान तो नौका रानो जुदी छारिये गया चे अमलिये गया एनखान तो उन हिसाब से रान जहाँ मेना बखान चूना लगा हुई बखान एमन तेमान खोद को जिनिस को रान हुई तो अभी लगती जिनिस इन साव सावते जहाँ किन लै किया चे मिट्टा बारे जिनिस तो रोहे मड़ंग ते ध्यान लगती कन गया जेमन ते जहाँ जगह रे बन रोहे ना आर दिन ना चिकाते तो समय में पूरा इदी गोद अकन गया ना दा जड़ी लिखान गे अब चासपास पासा से कोन लहा तो जिनिस को मड़ंग ते हासा सपड़ा अड़ी लगती कना।
0: बिल्कुल ठाकुर जी,
1: तो चाषी भी हम इसी को अभी बेस कपल मरा बन आजमे थे तो धान फसल के लिए खेत की तैयारी विषय इदी करते अभी नपाय गे तो समय हो समय करना उना इदी करते अब नुआ सपड़ाव निहते बन सपड़ाव मा तो दिला बन कर्ज कर मानसे बन लहा जोगा और बन रिस्क तेहें संथाली लोकगीत ते शंकर चंद्र मुर्मू और सांतेन को सपड़ाव ते हैं।

0: ᱪᱟᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱞᱳᱠ ᱜᱤᱛᱟᱹ ᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱢ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱟᱨᱡᱠᱨᱚᱢ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱧᱚᱜᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱧᱚᱜ ᱞᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱠᱚ
1: ᱢᱚᱣᱥᱚᱢ ᱟᱨ ᱡᱚᱞᱵᱟᱭᱩ ᱭᱟᱦ ᱤᱭᱩᱱᱮᱥᱠᱳ ᱠᱟ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱦᱮ ᱠᱮᱭᱟ ᱟᱯᱱᱮ ᱠᱟᱵᱷᱤ ᱥᱚᱪᱟ ᱦᱮ ᱠᱤ ᱢᱚᱣᱥᱚᱢ ᱟᱨ ᱡᱚᱞᱵᱟᱭᱩ ᱢᱮ ᱠᱮᱭᱟ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱦᱮ ᱟᱭᱮ ᱦᱟᱢ ᱢᱚᱣᱥᱚᱢ ᱟᱨ ᱡᱚᱞᱵᱟᱭᱩ ᱠᱮ ᱵᱤᱪ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱠᱮ ᱵᱟᱨᱮ ᱢᱮ ᱡᱟᱱᱛᱮ ᱦᱮ मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहाँ खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
3: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
2: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
4: हमने 1800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
2: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
5: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मील चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
2: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
6: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
2: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
7: मैं एपीओ का डायरेक्टर हूँ। मेरा एपीओ पूरा हो गया है, 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है, उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया।
2: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
8: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
2: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।
0: किसान भाई बनो,
9: कार्यक्रम में आप सबका पुनः स्वागत है। ठाकुर जी, अब हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और हम जानकारी लेते हैं भेंटवार्ता के माध्यम से खाद कैसे तैयार करें, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं मनोज कुमार
0: और उनसे बातें कर रहे हैं आसामनी गोप जी।
10: कार्य में खाद की भूमिका, इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आप अपना परिचय हमारे किसान भाई बहनों को दीजिए।
11: मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं हम जोजहातु के सरेकला खरसा जिले से हैं।
10: आपका हम कार्यक्रम किसानवाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोहार।
11: जोहार।
10: मनोज जी, सबसे पहले आप हमारे किसान भाई बहनों को बताइए, फसलों के लिए खाद क्यों जरूरी है?
11: अच्छी फसल के लिए खाद बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप खाद अगर डालेंगे तो फसल जो होते हैं वो फसल उगाने के लिए खाद हमारे लिए जरूरी है।
10: जी सही बात है, बिना खाद के हम किसी भी फसल की
11: अच्छी फसल करने के लिए हमें खाद की आवश्यकता होती है।
10: आप अपने खेत में अब सब्जियों के लिए किस तरह के खाद का उपयोग करते हैं?
11: हमारे जो खेत में हम जो फसल उगाते हैं उसमें ज्यादातर हम लोग जैविक खाद का उपयोग करते हैं।
10: तो ये किस तरह का खाद होता है?
11: ये जैविक खाद जो होता है वो हम लोग जो तैयार करते हैं खाद, वो घर के जो बैल बकरी होते हैं उनके जो गोबर होते हैं, गौमूत्र होते हैं, उन सबको सड़ाकर एक जगह पे इकट्ठा करके हम लोग उनका तैयार करते हैं और वही खाद का उपयोग करके हम लोग अपने खेतों में डालकर जब सब्जी लगाते हैं तो वही खाद का उपयोग करके हम लोग।
10: बिल्कुल, और प्रायः हमारे गांव घरों में ये तो हम लोग को देखने को मिलता ही है
11: जी।
10: तो लगभग इस खाद को तैयार होने में कितना समय लगता है?
11: वैसे तो आप 15-20 दिन में भी तैयार कर सकते हैं अगर आप खाद ही बनाना चाहते हैं तो। अगर आप दूसरा काम भी कर रहे हैं और खाद आराम से तैयार करना चाहते हैं तो आप 2-3 महीने के बीच आपका खाद तैयार हो जाएगा।
10: तो इसके लिए किस तरह की प्रक्रिया को अपनाते हैं?
11: कम से कम समय में अगर आप खाद बनाना चाहते हैं तो जैसे आप कम मात्रा में खाद बनाना चाहते हैं तो जैसे हो गया गोबर 10 किलो जैसे हो गया, गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया
10: जी,
11: बेसन, बेसन जो होता है ना वो भी हमारे खाद के लिए बहुत उपयोगी चीज है।
10: अच्छा।
11: तो बेसन हो गया, गुड़ जो होते हैं गुड़ भी हमारे खाद बनाने में बहुत सहायता करते हैं।
10: अच्छा।
11: अगर उसको मिला के हम लोग 5-10 लीटर अगर पानी मिला के अगर हम 10-12 दिन के लिए अगर रखते हैं तो इसमें बहुत अच्छा आपका खाद निकल के आता है।
10: अच्छा, इसके लिए मात्रा भी रखते हैं अभी जैसा गुड़ बताए और?
11: हाँ हाँ, इसमें मात्रा होती है, जैसे आप 10 किलो अगर जैसे गोबर को तो हम तोड़ नहीं सकते हैं, गुड़ मिलाएंगे अंदाजा क्यों हो जाता है कि अगर आप इतना सा मिलाएंगे तो ऐसे खाद कर सकते हैं।
10: अच्छा।
11: उसको किसी छांव जगह में या सूखा जगह में आप रख के 8-10 दिन के लिए रख दीजिए, उसमें बहुत अच्छा सब्जी के लिए बहुत अच्छा होता है वो खाद।
10: अच्छा, और ये लगभग 8-10 दिनों में ये खाद तुरंत तैयार होता है?
11: जहाँ गाय बांधते हैं वहाँ से गोबर उठा के सीधा गोबर जहाँ सवेरे साफ सफाई करते हैं तो फेंक देते हैं ना, उस जगह में हम लोग इकट्ठा कर देते हैं, तो 2 महीना तक लगते हैं सूखने के लिए, क्योंकि हम लोग डेली डेली एक ही जगह पे हम लोग गोबर डालते हैं, तो ऐसे में सूखने में टाइम लगता है। और वही गोबर को हम लोग पीट पीट के, मतलब घंटा से पीट पीट के उसको पूरा मुलायम करते हैं, मतलब गूढ़ा करते हैं।
12: अच्छा।
11: हाँ, उसको गूढ़ा करके हम लोग फिर उसको खेत में जीत देते हैं। तो इसमें हमारा जो मिट्टी होता है वो उर्वरक रहता है और मिट्टी के लिए बहुत अच्छा होता है देसी वाला खाद।
12: हाँ, ये तो बहुत अच्छा। और इससे जो फसल तैयार होता है वो भी काफी अच्छा होता है।
11: अच्छा होता है, इसमें शरीर के लिए भी अच्छा है।
12: ये जो आप बताए मात्रा, वो कितना निर्धारित करते हैं बेसन और गुड़ के लिए?
11: जैसे आपका 10 किलो अगर गोबर लेते हैं
12: जी,
11: तो इसमें 8 किलो गौमूत्र हो गया, बेसन हो गया आपका 1 किलो 2 किलो आप बेसन जीट दीजिए
12: जी,
11: फिर गुड़ हो गया 1 किलो आप गुड़ मिला दीजिए इसमें, और पानी जो होते हैं वो भी 8-10 लीटर मिला के आप उसको घोल बनाते हैं, घोल बना के उसको छांव जगह में रख के उसका 8-10 दिन में उसका खाद तैयार हो जाए, खाद की तैयारी कर सकते हैं, और वो भी घरेलू नुस्खे से जी।
12: ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है और हम उम्मीद करते हैं हमारे किसान भाई बहन इसका लाभ जरूर लेंगे
11: जी।
12: जैविक खाद गोबर खाद किस तरह फसलों के लिए लाभकारी है?
11: जैविक खाद जैसे गोबर हो गया, फसल हो गया, हरी पत्ती हो गया, या पेड़ से जो गिरते हैं पत्ते उनको हम सड़ा कर, पत्तियों को सड़ा कर उनको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, जैसे जैविक खाद हो गया उसको हम लोग सड़ा कर बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हरी पत्ती हो गया इन सब को सड़ा कर बनाते हैं।
12: जो भी फसल है वो बहुत अच्छा होता है।
11: हाँ,
12: किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है,
11: ये मिट्टी के लिए भी सही होता है और फसल के लिए भी अच्छा,
12: फसल के लिए भी अच्छा होता है। जो भी फसल है साग सब्जी है वो सब खराब नहीं होता है?
11: जैविक खाद जैसे प्राकृतिक पदार्थों से बनता है, जैसे गोबर हो गया, फसल अवशेष, हरी पत्ती, इन सबको सड़ाकर हम सड़ाकर खाद की तैयारी करते हैं
12: जी।
11: जैसे कि इसमें पौधा और मिट्टी दोनों के लिए पोषक तत्व बना रहता है।
12: ये तो बिल्कुल सही बात है
11: जी।
12: और इसके उपयोग से जो उपज है वो भी काफी अच्छा होता है।
11: हाँ, इनसे जो सब्जी उगता है

0: वो बहुत अच्छा होता है और मिट्टी के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
1: इसका उत्पादन है सब्जियों का वो भी काफी अच्छा होता है और वो खराब नहीं होते हैं जल्दी।
0: वो जल्दी खराब नहीं होते, जैसे आप रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं तो एक से एक दिन में ही आपका मुरझा जाता है अगला दिन। लेकिन ये जो
1: आप अपने फसल में किसी तरह के रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं?
0: ऐसे तो हम नहीं करते हैं, मेरा बैल बकरी गोबर यही सबसे हम अपना खाद का उपयोग करते हैं, लेकिन बाकी जो हमारे अगल बगल में जो करते हैं बहुत सारे ऐसे रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं और उसका जो फसल होता है वो जल्दी बढ़ भी जाता है और जल्दी तैयार भी हो जाता है, लेकिन इससे जो मिट्टी होते हैं वो मिट्टी के लिए हानिकारक है और जो फसल है देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में आपको शरीर में प्रॉब्लम भी हो सकता है ज्यादातर आप उपयोग करते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है और इससे शरीर को भी नुकसान पहुंचता है और इसके साथ ही जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो भी धीरे धीरे
0: जाती है। जी, और अगर हम लोग जैविक खाद का ज्यादा उपयोग करते हैं तो इसमें हमारा जो मिट्टी होता है वो उर्वरक ज्यादा होता है और उनका जो मिट्टी है वो ज्यादा भुरभुरी। रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं तो मिट्टी जो है ना दो तीन साल बाद वो टाइट होने लगता है।
1: बिल्कुल सही बात है और इसके उपयोग से जो मृदा में रहने वाले छोटे छोटे केचुए उनको भी नुकसान।
0: हाँ, जो केचुए होते हैं और जो भी कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं अगर रासायनिक खाद ज्यादा।
1: आपको कृषि कार्य से किस तरह का लाभ मिल रहा है?
0: लाभ तो मिल रहा है क्योंकि हमारा बाहर से ऐसा कुछ नहीं है खरीदना, जो हमारे जो घर पे ही हम लोग गोबर खाद तैयारी करते हैं और अपना जो पौधे उगाते हैं सब ठीक है।
1: जी, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हम किसान भाई बहन जितना ज्यादातर हो सके आप जैविक खादों का उपयोग करें जो घरेलू नुस्खों से बनते हैं, इन खादों का उपयोग करके हम खेती को जो मतलब जो भी हम साग सब्जी वही लाभदायक है और खेत के लिए भी लाभदायक, तो ज्यादातर रासायनिक खादों का उपयोग ना करते हुए हम जैविक खादों का उपयोग करेंगे।
1: कृषि कार्य में खाद की भूमिका, इस विषय में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए हम आपका पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो है
2: चसी वे हमसी को तो बढ़ाए थे मिन गपल मारा कि खाद कैसे तैयार करे विषय दी करते नाकिन ले थे मनोज कुमार इकलिन खोजा मनोज कुमार तकिन और अकिन सलाकिन तहकना आसामानी गोप तकिन निये गपल मारा तेम दिला और कच करम माचक लाजोगा और आजम लेके नो मीट बार जरूरी संदेश
3: किसान मान धन योजना

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जलवायु परिवर्तन क्या है, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है।
4: किसान भाई बहनों, इसी संदेश के साथ कार्यक्रम किसानवाणी अब यहीं संपन्न होता है। आपसे पुनः मुलाकात होगी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आशा मणि गोप और
5: ठाकुर चंद्र मुर्मू तिकीना, जोहार
4: जोहार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान बानी, और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से मुख्य समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्तावित खंडों की अस्थायी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की कुल लंबाई 1,659 किलोमीटर से अधिक है। ये झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित 9 राज्यों में फैले हुए हैं। सरायकेला खरसावां जिला में युवा भारत कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के संयोजन से नवागांव पंचायत भवन में महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय ग्राम पंचायत की मुखिया जयश्री बोदरा ने की। राज्य भर में आज ईद उल अजहा मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा को लेकर प्रशासन सतर्क है और शांतिपूर्ण माहौल में बकरीद मनाने को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बकरीद पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के प्रति दिखाए गए अटूट विश्वास, त्याग और समर्पण की याद में मनाई जाती है। पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के बटसारा में कूटी काटने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। आज सुबह बटसारा गांव के एक खलिहान में ट्रैक्टर में लगी कूटी मशीन से पुआल काटने के दौरान उनका हाथ मशीन के अंदर चला गया और अधिक खून बह जाने से उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। पड़वा थाना की पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र की कीताडीह स्थित माखन गली में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को टाटानगर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी कीताडीह में किराए के कमरे में रह रहा था। वह गम्हरिया मलेरिया विभाग में तैनात था और पीड़िता के मकान के पास ही किराए पर रहता था। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार। हम आकाशवाणी के चार और सुनते हैं कार्यक्रम सात रंग। इस कार्यक्म के साथ है रुद्रानी घोष और तापुसी नंदी।

अभी आप सुन रहे थे बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम संथाली।

0: कल्याण।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है।
5: परिस्थिति रे बोले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे रखा कि हम बोले रुड़ तबन में अलग परिवार से मतलब पूरे ये ना
6: वरना मंगलोर आए को गांव वाले जरा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ मना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
7: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
8: नितम बुरा मिसिंग तामसाय अनिता तामसाय भरूपा ऐसा करना ऐसे दुकुरा मिना अन्य यापा मेरिया तपा मेरिया वाह बेटा निका
9: अन्य न तुम दो मुंबई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा उरो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मुनि में उड़ी ने बागिया तो किन्हें दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमे दुर्गम को यहाँ तबो जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको मेल मिया
10: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लेंगे से जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अली आया नु तुम ते ना मिल आप ही लेते ना।
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: निये सामदेस तायनम एड्स आजार आर ओना रे बांचाव इदी खातिर मन डॉक्टर सुनारा माझी तिकना गापान मराबन आंचोमा।

अभी आप सुन रहे थे सांथाली कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार और ज़िले में आजकल। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
0: हर घर

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड समेत 9 राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों का लाभ उठाकर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी जुटाने के प्रयास तेज। आईआईटी आईएसएम धनबाद में बीसीसीएल के सीएसआर पहल के तहत छात्रों के लिए स्टेम शिक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन प्रमंडल की ओर से आज हाथी पीड़ित ग्रामीणों के बीच 22 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा राशि भी किया गया वितरण। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपने सिफारिशों से जुड़ी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। और राज्य के 3 पहलवान एशियन गेम्स 2026 के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए रांची से हुए रवाना। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रस्तावित खंडों की अस्थायी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की कुल लंबाई 1,659 किलोमीटर से अधिक है। ये झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित 9 राज्यों में फैले हुए हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य परिचालनशील राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों का लाभ उठाकर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी जुटाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में हर अवैध अप्रवासी की पहचान करके उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। आज गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने यह बात कही। श्री शाह ने कहा कि सरकार सीमाओं की सुरक्षा और देश में अवैध अप्रवासन को समाप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करे।
0: आईआईटी आईएसएम धनबाद के पेनमैन ऑडिटोरियम में बीसीसीएल के सीएसआर पहल के तहत अंडर प्रिविलिजेंट और प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन छात्रों के लिए स्टेम शिक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य बीसीसीएल क्षेत्र के जरूरतमंद और परियोजना प्रभावित छात्रों को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल और वैज्ञानिक शिक्षा बेहतर जरूरी है और ऐसे कार्यक्रम बच्चों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और तकनीकी समझ विकसित करने में सहायक साबित होंगे।
2: स्टेम एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे स्कूल में इसकी पढ़ाई थी, लेकिन ये आईएसएम आईटी ऐतिहासिक इंस्टीट्यूट और बीसीसीएल का भी इसमें कुछ अल्प योगदान रहा। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल जानकारी स्कूलों में जाकर मैंने इनको ये भी थोड़ा सा इनसे आग्रह किया।
0: पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन प्रमंडल की ओर से आज हाथी पीड़ित ग्रामीणों के बीच मुआवजा राशि का वितरण किया गया। डीएफओ अविरूप सिंह सिन्हा ने के नेतृत्व में संसगदा रेंज अंतर्गत भनगांव और नवागांव के ग्रामीणों को सहायता राशि प्रदान की गई। यह कार्यक्रम ससंगदा रेंज कार्यालय में आयोजित हुआ, जहां हाथियों के हमले में घर टूटने, फसल बर्बाद होने और जानमाल की क्षति झेलने वाले ग्रामीणों को मुखिया लिपि मुंडा की मौजूदगी में वन विभाग के अधिकारियों ने चेक के माध्यम से राशि का भुगतान किया। वन विभाग के अनुसार हाथी प्रभावित ग्रामीणों को कुल 22,53,397 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी सिफारिशों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सौंप दी है। यह रिपोर्ट व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य देश भर में मुस्लिम महिलाओं के कानूनी, सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करना है। आयोग ने कहा कि हाल के कानूनी सुधारों से महिलाओं के अधिकारों को मजबूती मिली है, लेकिन कानूनी जागरूकता और न्याय तक पहुंच को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर में आज ईद उल अजहा शांतिपूर्वक मनाया गया है। इस मौके पर राज्य के विभिन्न मस्जिद और ईदगाह में नमाज की विशेष व्यवस्था की गई। ईद उल अजहा को लेकर प्रशासन भी सतर्क रहा और शांतिपूर्ण माहौल में बकरीद मनाने को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। बकरीद पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के प्रति दिखाए गए अटूट विश्वास, त्याग और समर्पण की याद में मनाई जाती है। इस दौरान राजधानी रांची समेत राज्य भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिखी प्रशासन की तत्परता। रांची जिले के चान्हो प्रखंड के कदम टोली में एक वर्ग विशेष द्वारा गांव के एक परिवार के महिला पुरुष और 3 साल के मासूम बच्चे के साथ मारपीट की घटना को भारतीय जनता पार्टी में निंदनीय बताया है। घटना के 4 दिन हो जाने के बाद भी अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं होने पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है।
3: कहते तो है कि अगुआ सरकार, लेकिन इस अगुआ सरकार में जेल में कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है, यहाँ के लोगों के हित में और यहाँ के लोगों के साथ ये नहीं चाहती है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग रहे। कि इस तरह क्यों होता है इस झारखंड प्रदेश में और इस सरकार में।
0: जमशेदपुर में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने रात्रि गश्ती और टेंगू मोबाइल की निगरानी तेज कर दी है। इसी अभियान के तहत टेलको थाना पुलिस ने बंद घर में चोरी की कोशिश कर रहे एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पुलिस की को सूचना मिली थी कि LFS स्कूल के सामने एक बंद क्वार्टर में चोरी का प्रयास कर रहे 2 युवकों को पकड़ा गया है। पूछताछ में इन्होंने कई थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात कबूल की।

0: इनके पास से कुल 15 लाख रुपए कीमत के सोने और चांदी जैसा जो पदार्थ है जिसकी अभी पुष्टि हो जाएगी, एक ताला काटने का सामान जो हम बता रहे थे वैसा, नगद राशि 58,130 रुपए बरामद हुए हैं, एक जो स्प्लेंडर बाइक जो घर के बाहर खड़ी थी वो भी हमने सीज किया है।
1: माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य और विपक्ष के नेता पिनराई विजयन के प्रति प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की वाम दलों ने आलोचना की है। इस संबंध में वाम दलों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ईडी की कथित रूप से हो रहे दुरुपयोग के खिलाफ वाम दल 29 मई से 1 जून तक राज्य भर में प्रदर्शन करेंगे। पार्टी की ओर से कहा गया है कि पिनराई विजयन के घर पर की गई छापेमारी राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। माकपा की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आरोप लगाया गया है, पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को हथियार बनाया जा रहा है। पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के बटसारा में कुटी काटने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। आज सुबह बटसारा गांव के एक खलिहान में ट्रैक्टर में लगी कुटी मशीन से पुआल काटने के दौरान उनका हाथ अंदर मशीन में चला गया और अधिक खून बह जाने से उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। पड़वा थाना की पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया। राज्य के 3 पहलवान एशियन गेम्स 2026 के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए रांची से रवाना हुए हैं। रिया कुमारी, अमित गोप और अभिषेक कुमार दिल्ली और लखनऊ में आयोजित ट्रायल में भाग लेकर भारतीय कुश्ती टीम में जगह बनाने का प्रयास करेंगे। झारखंड राज्य कुश्ती संघ ने इसे राज्य के खेल इतिहास के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए खिलाड़ियों की मेहनत और खेल विभाग के सहयोग की सराहना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत 9 राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों का लाभ उठाकर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी जुटाने के प्रयास तेज। आईआईटी आईएसएम धनबाद में बीसीसीएल के सीएसआर पहल के तहत छात्रों के लिए स्टेम शिक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन प्रमंडल की ओर से आज हाथी पीड़ित ग्रामीणों के बीच 22 लाख रुपये से अधिक की मुआवजा राशि का किया गया वितरण। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी सिफारिशों से जुड़ी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और राज्य के 3 पहलवान एशियन गेम्स 2026 के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए रांची से हुए रवाना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे दुमका संवाददाता।
1: दुमका जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण गर्मी में भी लगातार बिगड़ती बिजली व्यवस्था से लोग परेशान हैं। आए दिन लोग जगह जगह एकजुट होकर विरोध जता रहे हैं, लोग सड़क जाम कर रहे हैं और बिजली विभाग एवं राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। पिछले दिनों सांसद नलिन सोरेन के मोहल्ले के लोगों ने स्टेशन रोड को जाम किया और गुस्सा जताया। जाम में सांसद भी फंसे। लोगों ने सांसद को अपनी समस्याएं सुनाई।
2: हम लोग जो है लाइन के लिए त्रस्त है, एक बूंद पानी टंकी में नहीं चढ़ रहा है, यहाँ का सिस्टम फेल है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग जोड़ता है उड़ जाता है, लोड नहीं ले रहा है, इसमें जो है और ट्रांसफार्मर बढ़ाना होगा।
1: ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अनियमित बिजली आपूर्ति की समस्या से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि
3: इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो रहा, पानी का समस्या, पानी तो आ ही नहीं रहा है, सप्लाई पानी भी बंद है।
1: दुमका जिले में कम पानी में वैज्ञानिक तरीके से खरीफ की खेती करने के लिए किसानों को तकनीकी रूप से तैयार किया जा रहा है। इसके तहत कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से कन्वेंशन सेंटर में जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला का आयोजन किया गया। कर्मशाला में जिले भर से पहुंचे किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों के बीच खरीफ खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं। जिला कृषि पदाधिकारी निशा कुल्लू ने बताया कि इस वर्ष मानसून के दौरान 20-30% तक कम वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए किसानों को वैकल्पिक खेती अपनाने की सलाह दी गई है। किसानों को ऊंचे क्षेत्र में धान की खेती कम करने और नीचे और गड्ढे वाले क्षेत्र में धान की फसल लगाने की सलाह दी गई है। वहीं वैकल्पिक खेती के रूप में मड़ुआ, तिलहन और दलहन की खेती अधिक से अधिक करने की भी सलाह दी गई है।
4: ऐसे कि अपलैंड में हम लोग ऐसे धान लगाते हैं, फिर हम लोग धान को डिस्कार्ड करें, इसके अलावा हम लोग उसके जगह पर लगनी फसल ली और मड़ुआ की खेती करें, मिलेट्स लगाए, क्योंकि इसमें कम पानी की आवश्यकता होगी। डीजल भी अगर कोई बोलते हैं उसको उसके साथ कर सकते।
1: उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा कि इस वर्ष मानसून में कम वर्षा होने की संभावना को देखते हुए किसानों को उन तकनीकों को अपनाना चाहिए जिसके माध्यम से कम वर्षा में भी अच्छी से अच्छी खेती की जा सकती है और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
5: एलिनो मतलब जो एलिनो आता है, 150 साल में सबसे स्ट्रॉन्ग आने वाला है। जो एलिनो आता है तो यहाँ इंडिया में मानसून बहुत कम हो जाता है, लेकिन इंडिया में उसमें
1: दुमका सहित पूरे संताल परगना में गर्मी बढ़ने के साथ ही सर्पदंश की घटनाएं बढ़ी हैं। मई माह में 26 दिनों में पूरे संताल परगना में सर्पदंश के 151 मामले सामने आए, जिनमें 6 की मौत हुई। सबसे अधिक घटनाएं दुमका, पाकुड़ और जामताड़ा की हैं। दुमका जिले में 26 दिनों में सर्पदंश की 31 घटनाएं हुई हैं, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने सांप काटने पर तुरंत व्यक्ति को निकटतम अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराने और झाड़ फूंक करने से बचने की सलाह दी है। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
0: अभी आप सुन रहे थे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची चायवासा केंद्र से FM के 101.7 MHz पे। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम के साथ। मैं हूँ राधा, नमस्कार। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कर्मा से। आवाज़ें हैं कविता कृष्णामूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों के स्वर में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है अमला टोला चायबासा से गौरख प्रसाद गुप्ता, फूलवंती गुप्ता, शीतल गुप्ता और अभिषेक सोनू। छोटा निमड़ी चायबासा से बाबूराम, शांति देवी, रोहन कुमार, कोमल कुमारे, ऋतिक कुमार। बड़ा निमड़ी चायबासा से तुलसी पतिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार, शुभम कुमार। आमला टोला चावसा से गौरख प्रसाद गुप्ता, फूलवंती गुप्ता, शीतल गुप्ता और अभिषेक सोनू। न्यू कॉलोनी निमडी से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, खुशबू, खुशी, अभी, अनीश, अनामिका, अंकित, अमित, मनीष, मुन्ना। सेंटोला चावसा से इसी गीत को सुनना चाहा है भोला राम मधुर, विनोद कुमार, पवन, मीना पवन। आप सबों की पसंद पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कर्मा का ये खूबसूरत सा गीत कविता कृष्णामूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों के स्वर में। गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

और अब सुनते हैं फिल्म एक दूजे के लिए, ये सुंदर सा गीत लता मंगेशकर एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। गीत को सुनना चाहा है गांव विदरी से के केपी सेठ सोय, दुर्गामती सरिता रेशमी, राजकुमारी विशाल, मुन्ना सोय, देवेंद्र ताती, राकेश ताती, निशा कुमारी प्रकाश, ललित प्रधान, श्याम देव नाग, सुदर्शन प्रमाणिक। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एक दूजे का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म एक दूजे के लिए का यह खूबसूरत सा गीत, और इस गीत को सुनना चाहा था का नारायणपुर आमदा से नायडू महतो, खेतो मोहन साहू, कैलाश बाबा, उषा महतो, प्रिया महतो, डॉली महतो, तरुण महतो, पंकज कुमार महतो एवं समस्त महतो परिवार। इसी गीत को सुनना चाहा था जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, कुचाई गांव इचाहातू से गोलाराम लवादा, लुद्री, सोमनाथ, पूर्णिमा, लालमुनि, बिंजना लवादा परिवार के सभी सदस्य, गांव लोसो दिकी से कोमल महतो, प्रेमी महतो, गोविंद, जीतू, साइमान महतो और परिवार के सभी सदस्य, गांव पोंडाकाटा से इसी गीत को सुनना चाहा था नरसिंह महले, सावन महले, रॉकी महले, करीना महले, कविता महले, हर्षमणि महले, पार्वती महले, सुहानी महले, आशामणि, नंदिनी महले, संजय महले, संजीव महले, गोपाल महले, अर्जुन चक्र, बबलू लोहार। आप सबों की पसंद पे हम आपको सुनवाए फिल्म एक दूजे के लिए का ये खूबसूरत सा गीत। और अब अगला गीत हम सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है दिल चाहता है। इस गीत को आवाज दी है सोनू निगम ने और सुनना चाहा है चांडिल से, चांडिल गांव हारोडी से तुलसीदास महतो, मनोरमा महतो, कल्पना महतो, मनमोहनी महतो, दीनबंधु महतो। और इसी गीत को सुनना चाहा है बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवेनकर, धीरज सब्बा सरे। और साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा। आप हैं आदर्श नगर भटिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, नवनीत ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर। आप सबों की पसंद पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल चाहता है का ये खूबसूरत सा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल चाहता है का ये सुंदर सा गीत सोनू निगम की आवाज़ थी। और अब अगला गीत सुनने से पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। आशिकी इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू की आवाज़ में। सुनना चाहा है रेलवे रोड गंज ढुंडवारा से मोहम्मद कलीम, जख्मी भुवन प्रकाश गौतम, शेख मोहम्मद फारूक, अब्दुल सत्तार अंसारी, डीएच बच्चन। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी। मॉडल टाउन पानीपत से इसी गीत को सुनना चाहा है संदीप गुगरानी, आशा गुगरानी, पूजा अनन्या, अनया, नेहा सागर, गुंबर हिमांशु गुगलानी, इमू कुरैसी, सुधीर नूतन। राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। इसी गीत को सुनना चाहा है चटोडा सारा गांव से सुजान वर्मा, सोहद्रा वर्मा, आयुषी, कृत वर्मा, युवगिदन सहावर टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। आप सभी की पसंद पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आशिकी का ये गीत कुमार सानू की आवाज़ में।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ना धरा रे नका गे आम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: मोर नाम मंगल राय को गांव बरगरा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहां बंदा है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रनबला देवी गाँव बारे हत्तो तो घर आई में हमरे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
5: नितुम बुरन सिंह तमसाय अनिता तमसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुर मिनाइए यापा मैं रियल तपा मैं रियल वाह बेटा निका
6: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्यान हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन तुम कितमई कोड़ा मैंने में बुरी ने बागिया तो कि दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमे बुरुवन गया तब जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको मेल मिया अलिंग मुनि सुरेन पे ते आपी लेता ना
7: लिंग से जा हुरा रे मिनाइ रो जिता हुरा रे मिनाइ रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिटा हुरेन का
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी।

0: साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि, 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5,00,000 तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4,00,000 तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर
1: इस संदेश के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद हम यहीं पे समाप्त करते हैं।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है अलग अलग। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है आर जी बर्मन ने। इस गीत को सुनना चाहा है धमतरी छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार, ध्रुवंशी श्रीमती सरोज ध्रुवंशी, मास्टर शानू ध्रुवंशी, पुणे से पंकज बड़ौदा, आर्या आरती बी सिंह बड़ौदा, चंद्रप्रभा बड़ौदा, दंतरेगी से भागवत वर्मा, लवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मालवी सिंगारपुर से सालिक पुजारी। आप सभी की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अलग अलग का गीत।

बालमा इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। आशा भोसले कुमार सानू की आवाज़ों में गीत लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। इस गीत को सुनना चाहा है पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर, गोपाल पाटिल। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला भाई, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आशमा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुस्तवा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है सरायकेला गांव कीता से राधा कृष्ण गोप, सुनीता, उमा, गीता, रीता, सरस्वती, आराध्या, अमित, सुमित, अंकित, अभिषेक, आशीष, विक्की, शुभम, विनोद, राजू, राजन, माहिर, गोप। और आप हैं बड़ा बाम्बू गोपालपुर से संतोषी महतो, जय महतो, बड़ा बाम्बू सुपाई साई से इंद्रजीत तांती, मधुरानी दास और दृष्टि। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, भटगांव बलोदा बाजार से राम दुलार साहू, नीलिमा साहू, लच्छनपुर से जीवन लाल रजक, रामजी साहू। और आप हैं तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, पोरू मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तुमैर बारेकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश अरसनान, यूसुफ तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुसफ़र खां तरवी, जरीना तरवी, मुबारक तरवी, परवेश तरवी, बिटिया रोजमीन तरवी, तुमेर तुमूर तैमूर तरवी, समस्त तरवी परिवार। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है सरायकेला पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरी, सुरुमणि मुंडरी, हीरामणि, हेमंती डोबरो, साजन सिद्धेश्वर पारापुर, शिवाजी डोबरो, मुकेश कुशल मुंडरी, जामुन सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना FM, शिवा मुंडरी। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बालमा का गीत आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ों में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म बालमा का गीत, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चांदनी का गीत, बाबला और लता मंगेशकर की स्वर में आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है शिव हरि ने। सुनने के लिए फरमाइश भेजा है अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, कृष्णा वर्मा और समर फूलमाली, पटेल नगर भलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, आदर्श नगर भलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा, आमजुरा पुखरिया मालुका से शिवा गोप, प्रेम गोप, संगीता शिल्पी, लिपि, दीपाली गोप, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवि श्रीवास्तव। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गंजभीरे, राधिका गंजभीरे, बेबी अंशिका, तन्मय गंजभीरे, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चांदनी का ये सुंदर सा गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम रजनीगंधा में। आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी की चायबासा केंद्र से फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

फासले। इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में। सुनना चाहा है इस गीत को महादेव घाट, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मन मीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू, जी एस रामगढ़िया। इसी गीत को सुनना चाहा है महुलडिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी वंदनी, संतोष दीपक, संतोष राहुल, अनु तनु, भाई नंदू महतो, गुरुचरण नायक, अनसुया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, आयुष महतो, गीतेश महतो। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांवले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, और आप हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतक विरक, मीका विरक। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फासले का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

और अब हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म जख्म का गीत। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है M.M. करीम ने। इस गीत को सुनना चाहा है अमरगढ़ तह सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंद्र कौर मान, लखविंद्र कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, हरविंद्र मान, राजा सिंह मान, कुलविंदर कौर मान, K.S. मान और आप हैं यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकर, योगेश मालाकर, सुनीता मालाकर, मुस्कान मालाकर, धर्मेंद्र, जितेंद्र, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्या, अभय नंद आर्या, परमानंद आर्या, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जख्म का ये गीत।

फिल्म जख्म के इस गीत के लिए फरमाइश आया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, और इसी गीत को सुनना चाहा था नाज मंजिल महसोल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस बेगम इसरत अकरम बहु रुबीना परवीन नवासा अरहान बाबू नवासा हमजा बाबू नवासा तुमेरू बाबू नवासा सुमेरा नाज नवासी सुमेरा नाज नवासा नवासी अभिया नाज साजिया साहिन नाज नाजिया नूरी नाज बच्चू शेख चीना शेख कोकिलवारा से ओराई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैजल शेख नुजहत जहानाज कांति निकेतन राजनगर से कुशवेश्वर प्रसाद गुप्ता रुद्र गुप्ता और इसी गीत को सुनना चाहा था सादुल सह राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान मुन्ना प्रकाश शिव प्रकाश वेद प्रकाश चौहान। आप सबों की फरमाइश पे आप सुन रहे थे फिल्म जख्म का गीत। अलका याग्निक की आवाज़ थी, गीत आनंद बख्शी के थे, संगीत एमएम करीम के। इसी के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब हम ही पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारण ये कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करे।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर के लिए बधाई। मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता राय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। कुवार केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ

0: हित में जारी।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट वन ऑफ 20। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
3: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी पूरे हो चुके हैं। राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
2: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास 100% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक मूल्यांकन परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद विचार विमर्श आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय आवासीय खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी। देशों के लोगों के साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने 7 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना के कारण लोगों को भीषण लू से राहत 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत के क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीटवेव कंडीशन।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्लीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरूल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप चार। एक बार फिर गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत

12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अमित शाह ने मुल्क में हर भेजने के सरकार के पुख्ता अहद को दोहराया है। वो आज रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने के बाद एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत

0: कर्नाटक में सबसे तवील अरसे तक वजीर आला के ओहदे पर फायज रहने वाले सिद्धारमैया ने आज बेंगलुरु में गवर्नर के दफ्तर को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इससे कबल उन्होंने अपने काबीना साथियों के साथ नाश्ते पर मीटिंग की थी। बाद में नामानिगारों से खिताब करते हुए डीके शिवकुमार का नाम लिए बगैर उन्होंने गवर्नर मौसूफ से कहा कि रियासत में वजीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के लिए नामजद वजीर आला को मदऊ किया जाए। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: दो मरतबा के वजीर आला और दो मरतबा के अपोजिशन रहनुमा सिद्धारमैया ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 17 रियासती बजट पेश किए थे। उन्होंने रियासत में अहिंदा तहरीक शुरू की थी जो पसमानदा तबकों और अकलियतों की नुमाइंदा थी। सिद्धारमैया ने पार्टी हाईकमान की मर्जी के मुताबिक इस्तीफा दिया है। आज अहिंदा ग्रुपों की तरफ से इस्तीफे के खिलाफ रियासत के बहुत से इलाकों में मुजाहरे किए गए। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के हामियों ने खुशी मनाई। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ही कानून साज पार्टी के एक नए रहनुमा को चुनने और काबीना में इम्कानी रद्दोबदल के मजीद इकदाम पर बातचीत के लिए दिल्ली आ रहे हैं। बेंगलुरु से सुदिंद्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: देही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को यकीनी बनाने का तहैया कर रखा है कि मुल्क में कोई भी गरीब आदमी कच्चे मकान में न रहे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,91,00,000 मकानों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि निशाना 4

95 लाख मकानों का है। जनाब चौहान ने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा मकानों की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी सरकार बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों को मरबूत करके देही इलाकों के कुनबों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। खवातीन को बाख्तियार बनाने को उजागर करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत

0: ग्रेनेड लॉन्चर से कई हमले किए। दहशतगर्द यहां छुपे हुए हैं। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों की सूरत हाल अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पेचिंग में भारत चीन सरहदी मामलात पर मुशावरत और तालमेल से मुतालिक वर्किंग निजाम की 35वीं मीटिंग के दौरान यह तबादला ख्याल किया गया। तरफेन ने हदबंदी, सरहदी बंदोबस्त, तरीकेकार तय करने और आलमी शोहरत याफ्ता उर्दू शायर और अदबी शख्सियत बशीर बद्र का आज भोपाल में इंतकाल हो गया। वो 91 बरस के थे। उनके कुनबे के अफराद ने बताया कि वो एक तवील अलालत के बाद आज दोपहर दुनिया से चल बसे। उनकी तदफीन भोपाल टॉकीज के नजदीक कब्रिस्तान में आज शाम की गई। बशीर बद्र एक तवील अरसे से निसियान की बीमारी में मुबतला थे। वो उर्दू शायरी को जदीद तर्ज में ढालने और आसान उनकी गजलें भारत और बैरून मुल्क काफी ज्यादा मकबूल हुई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ शायरी की जान है। नहायत सलीस अल्फाज मगर तासुरात बहुत गहरे, कुर्बत पर मबनी जज्बात लेकिन ख्यालात आफाकी। उनकी शायरी में मोहब्बत, फुरकत, रिश्ते, अलहदगी और रोजमर्रा की जिंदगी के खामोश पोशीदा जज्बात पाए जाते हैं। बशीर बद्र ने उर्दू शायरी को एक ऐसी जबान अता करके एक नई जहद बख्शी जो आम लोगों के दिल के बहुत करीब है। उनके अशार मुशायरों में तो गूंजते ही थे, साथ ही अक्सर व बेशतर गुफ्तगू में भी इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने बहुत से मुशायरों की निजामत भी बड़ी दिलचस्प अंदाज में की। बशीर बद्र को 1999 में पद्मश्री से नवाजा गया था और उनके मजमूए कलाम आस पर उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड अता किया गया था। न्यूज डेस्क से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। भारतीय मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि शिमाल मगरब आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मौसमियात महकमे के साइंसदान डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव ने कहा कि मध्य प्रदेश में लोगों को शदीद गर्मी से काफी राहत मिल जाएगी।
2: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना तो सीवर कैटेगरी का हो सकता है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
0: दनांग में 17 साल तक की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में दाखिल हो गए। जुमरे में सचिन कलप्पा श्रोले ने 110 किलोग्राम के जुमरे में उर्दुन के समी अहमद अलावेद को 11

भारत की पीवी संधु और के एचएस प्रणॉय टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के सरकार के अहद को दोहराया है और कहा है कि वो रियासत में सरगर्म सियासत में शामिल रहेंगे। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दो इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Tonight.
1: सूरज जो जीवन का प्रतीक है, आज वही आग उगलता महसूस हो रहा है। धरती तप रही है, सड़कें जल रही हैं, हवाओं में ठंडक नहीं तपिश बह रही है। मई और जून की दोपहर अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये एक चेतावनी वाणी के है। बढ़ता तापमान, बढ़ती चुनौती, हीट वेव। पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव ने प्रभावित किया है। उसने स्वास्थ्य, कामकाज, खेती, बच्चों और बुजुर्गों सबके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन सवाल है, क्या हम इसके खतरों को पहचान पा रहे हैं? क्या हम उन लक्षणों को समझते हैं जो शरीर हमें समय रहते संकेत के रूप में देता है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस भीषण गर्मी में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखा जाए? इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर प्रोफेसर और मेडिसिन विभाग के प्रमुख लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल दिल्ली से डॉक्टर अनुपम प्रकाश। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार आनंद जी, बहुत बहुत नमस्कार और सभी को नमस्कार, श्रोताओं को भी।
1: किन लोगों को हीट वेव से सबसे ज्यादा खतरा होता है, बच्चे, बुजुर्ग या बाहर काम करने वाले लोग?
2: जो ये ग्रीष्म लहर है या गर्मी की लहर है या हीट वेव जिसको आप कह रहे हैं, इस समय जैसे ही तापमान बिल्कुल चरम सीमा पर है, इस समय सभी को ध्यान रखने की बात है। कोई अपने को ये नहीं समझे कि वो बच जाएगा, तो सभी को ध्यान रखना जरूरी है। जो कोई भी दोपहर में बाहर जाते हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए और दोपहर के अलावा भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, जैसे कि बच्चे हैं बिल्कुल खासतौर से कम उम्र के बच्चे, जो बुजुर्ग लोग हैं, जितने ज्यादा अत्यधिक उम्र के लोग होंगे और जो लोग बाहर काम करते हैं, खासतौर से जो हार्ड वर्क करते हैं, लेबर करते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और समझ बूझ के साथ रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो इसमें अपने को समझे कि वो इम्यून है, उन्हें दिक्कत नहीं हो सकती है। गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी जन लोग हैं, इवन जीव जंतु जो हैं, उनको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्मियों में बाहर नहीं निकलना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि हम बाहर से आते हैं, हमें लगता है कि धूप बहुत ज्यादा थी, ये उसके कारण हो सकता है, कल मैंने कुछ ऐसा खा लिया, हो सकता है कि उसी की वजह से हो रहा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वो कौन से लक्षण हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
2: इसमें कई बार हमें पता नहीं चलता है कि क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि गर्मी से जाकर के बाहर से आने में आमतौर पर सभी को जो है गर्मी लगती है, पसीना आता है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो सकता है या थकान लग सकती है। लेकिन कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर अत्यधिक पसीना आए, क्योंकि शरीर की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से है कि जब भी आपका गर्मी होगी तो पसीना ज्यादा आता है, इससे शरीर को ठंडा मिलती है। लेकिन आपको अत्यधिक पसीना आए, वो पसीना आना बंद ही ना हो, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। कमजोरी लगे, उठा ना जाए, चक्कर लगे, सर में दर्द लगे, आपको बदन दर्द लगे, मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर लगे और उठने लायक नहीं लगे आपको, अगर उल्टी जैसा लगे आपको और मांसपेशियों में कई बार दर्द होने लगता है, जैसे क्रैम्प्स होने लगता है, वो अगर ये सब चीजें आपको लगती हैं, इसके साथ अगर आप तवज्जो दें कि अगर पेशाब नहीं आ रहा है या कम आ रहा है पेशाब, ये सब लक्षण ऐसे हैं, ये शुरुआती लक्षण हैं और इनमें दिक्कत होने की संभावना बढ़ सकती है अगर तवज्जो नहीं दी जाए। तो ये बहुत जरूरी है, सबको इनको आगाह रहना चाहिए कि इन सब चीजों में से कुछ भी हो तो फौरन ध्यान रखना चाहिए और अगर आराम नहीं आता है तो परामर्श लें चिकित्सक से।
1: लक्षणों से थोड़ा आगे बढ़े डॉक्टर साहब, कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहा है या फिर बुखार की समस्या है, या कई बार ऐसा होता है कि गर्मी में बहुत सारे जो हमारे कामकाजी लोग हैं वो बाइक से डिलीवरी करने जाते हैं या बाइक से ऑफिस जाते हैं, ऐसा लगता है कि चक्कर सा आ गया, आंखों के सामने धुंधला सा आ गया, वो ऐसे समय में क्या करें? क्या ये वार्निंग साइन है डॉक्टर के पास जाने का, या घर पर आराम करके राहत मिल सकती है?
2: अगर आराम नहीं आए तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आपको शुरुआती लक्षण लगते हैं, सर में दर्द लगता है, थकान लगते हैं, तो पहली चीज तो ये है कि जब तक मजबूरी ना हो तब तक बाहर ना निकले। लेकिन अगर मजबूरी ही है तो फिर आपको अगर जाना है और आपको ये लक्षण लगते हैं कि सर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टी आ रही है या मांसपेशियों में ऐंठन हो रहा है।

0: है, चक्कर लग रहा है, तो इन सब चीजों में फौरन आप अपना अगर जा भी रहे हैं कहीं तो वो स्थगित कर दें या रुक जाएं और ठंडी जगह पे जाएं या किसी पेड़ की छांव में रहें और पानी ज्यादा लें। अगर आप संभव हो तो नमक डाल करके, थोड़ा नींबू डाल करके जो है शिकंजी टाइप बना करके आप लें, या ओआरएस का घोल तो हर जगह मिल जाता है, तो ओआरएस का घोल बना करके पानी लें। इसमें नमक लेना जरूरी होता है क्योंकि नमक जो है, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक जरूर लें क्योंकि पसीने में नमक भी काफी लूज कर जाते हैं। आराम करें और जब तक बिल्कुल ठीक ना लगे तब तक ना जाएं। अगर तापमान, जैसा आपने कहा, बुखार हो गया है, बढ़ रहा है, तो ठंडी पट्टी भी रखनी पड़ेगी, और अगर बुखार में राहत नहीं मिलता है तो फिर डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है।
1: इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि गर्मी के मौसम में जब तापमान दिल्ली में तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस है और जो श्रोता देश के अलग अलग हिस्सों से हमें सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, वहां भी तापमान कमोबेश 40 से ऊपर है, ऐसे में खाने पीने की आदतों में क्या बदलाव करना जरूरी है?
0: ये बहुत जरूरी है कि हम अपने रहन सहन और खान पान पर ध्यान दें। साल भर ही देना जरूरी है, गर्मी के मौसम में और जरूरी है। इसमें जब प्यास लगे तब पानी पीने की जगह हर थोड़ी देर पे पानी पीना ही चाहिए, जिससे कि पानी की कमी ना हो। और सिर्फ पानी नहीं, हल्का सा, जैसे मैंने बताया, नमक डाल करके या छाछ है, नमकीन छाछ है या दही है, ये चीजें लें। फल लें, आजकल गर्मियों में बड़े अच्छे फल आते हैं और जूस वाले फल आते हैं जिनमें रसीले फल होते हैं, जिनमें आपको पानी की मात्रा ज्यादा मिल जाती है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें आप लें जिससे कि आपको फायदा रहे, पानी की कमी ना हो और तत्व भी मिले।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जैसे ही गर्मी आती है, चाहे बच्चे हों या युवा हों, वो कोल्ड ड्रिंक की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पीने को बहुत आतुर होते हैं, क्या ये शरीर के लिहाज से, स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य के लिहाज से सही है?
0: देखिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स है या कैफिनेटेड बीवरेजेस जिन्हें हम कहते हैं, या चाय, कॉफी, ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसमें ऐसे ही मदिरा, ये सब चीजें नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसमें पानी होता है, लेकिन इन सब चीजों से पेशाब आने की मात्रा बढ़ जाती है, तो अगर पेशाब ज्यादा होगा तो आप पानी ले भी रहे हैं तो वो उसमें निकल जाता है, तो इसलिए उससे आपके शरीर को पानी की आपूर्ति नहीं होती है, तो ऐसी चीजें लेने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा मीठे पदार्थ हैं, कई लोग फ्रूट जूस लेते हैं, भी ऐसी होती है, शुगर होती है, उनके लिए वो फायदेमंद नहीं होते हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीजें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी। ठंडा जो पानी आप कह रहे हैं, ठंडा पानी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आदमी बाहर से आता है बिल्कुल गर्मी से और एकदम से ठंडे पानी का सेवन करता है, तो कई बार जो है तापमान के बदलने से जुकाम, खांसी, नजला या वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो बाहर से आए तो 2-3 मिनट वेट करके, 4-5 मिनट वेट करके, उसके बाद जब आपका तापमान बाहर 45 डिग्री से घर के तापमान 30-35 डिग्री के आसपास आ जाए, तो फिर आप थोड़ा ठंडा पानी लेने की सोच सकते हैं।
1: एक और व्यवहारिक सवाल डॉक्टर साहब, बहुत सारे स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं देश भर में और बच्चे छुट्टियां मनाने या तो नानी घर चले जाते हैं या अपने गांव चले जाते हैं, वहां उन बच्चों के साथ जो खेलते हैं उनके नाना नानी, दादा दादी, तो सवाल यह है कि बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये बहुत ही जरूरी है, बच्चे और बुजुर्गों में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर, मतलब यंग लोग भी हैं, मिडिल एज भी हैं, डेढ़ उम्र के लोग भी हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए, गर्भवती महिलाएं हैं इनको भी ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखें कि धूप में बिल्कुल भी नहीं निकले, जो पीक आवर्स होते हैं, जो कहते हैं 12 से 3 या 12 से 4 का है, उस समय जो है आप बिल्कुल भी धूप से बाहर नहीं निकले घर से, क्योंकि अगर धूप में नहीं भी जा रहे हैं तो भी बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है और गर्म हवा से ही आपकी जो त्वचा है उसमें से वेपोरेशन, काफी पानी निकल जाता है। दूसरी चीज है, अगर खेलना है या पार्क जाना है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ग्रीष्मकालीन के अवकाश में हम लोग भी यही सोचते थे कि जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग, मतलब कि प्रातः सवेरे जल्दी जाए, सूरज जब तक धीमा है तो 6-7, 7:30 बजे तक आप घूम करके आए, या शाम को भी 6-7 बजे के बाद आप जाए, धूप रहते, मतलब रोशनी रहती है शाम को भी 7 बजे तक, तो आप 6 बजे के बाद आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जाएं तो साथ में पानी जरूर रखें और कुछ कपड़ा वगैरह लेकर के जाएं। अगर धूप है उस समय तो छतरी का लें, जिससे कि आप डायरेक्ट सनशाइन से कम सूरज की रोशनी से बच सके।
1: बहुत सारे लोग घरों में हैं जिनको या तो हाइपरटेंशन की समस्या है, या फिर वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, या फिर वो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, जिन्हें हर 10 दिन 15 दिन के पास डॉक्टर्स के पास

0: जाना होता है। हीट वेव और बढ़ते तापमान के बीच कई बार उनके मन में ये सोच आती है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, इस बार डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं, अगली बार जाएंगे वही दवाई कंटिन्यू कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका?
1: देखिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जैसे आप बता रहे हैं, गुर्दा रोग के जो मरीज हैं, इनको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पानी का जो है बहुत ज्यादा सेवन नहीं कर सकते हैं, और अगर सेवन करते हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें दिल की बीमारी नहीं है या किडनी की रोग नहीं है, तो ब्लड प्रेशर के और शुगर के लोग ले सकते हैं। लेकिन इनको भी वही है, पानी लेंगे तो मीठा नहीं लेना है और नमक डाल के नहीं लेना है, तो इसलिए इनको तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का। और जो निश्चित नियमित रूप से जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो उसको थोड़ा या तो अप्रैल से पहले रखें, और फिर मई में एक बार जाना पड़ेगा, तो जैसे मैंने कहा कि सवेरे जाएं या शाम को लें अपॉइंटमेंट, और जाकर के एक बार दिखा के जरूर आएं, क्योंकि कई बार जो है दवाएं भी इनकी थोड़ी बदलनी पड़ती हैं, खासतौर से जो गुर्दे के रोगी हैं उनमें भी, और ब्लड प्रेशर के रोगियों में भी दवा का ऊपर नीचे करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा पसीना आ रहा है, सोडियम लूज कर रहे हैं आप पसीने के साथ, तो पानी और सोडियम को देखने के लिए आपकी कई दवाएं होती हैं ब्लड प्रेशर के रोगियों में और गुर्दे के मरीजों में, और डायबिटीज में भी आजकल ऐसी दवाएं यूज हो रही हैं, तो आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है। लेकिन गर्मी में ना जाए, और बीच बीच में कई दिन ऐसे आते हैं जब बारिश हो जाती है भारतवर्ष में, तो उन दिनों नहीं तो अपॉइंटमेंट लेकर के जाकर के डॉक्टर को जरूर दिखा करके आए।
0: डॉक्टर साहब, दो छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल तो ये है कि ऐसे मौसम में वो कौन सी लापरवाहियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए?
1: देखिए, धूप में बिल्कुल भी ना जाएं जहां तक संभव हो। दूसरी चीज, पानी जरूर साथ में लेकर के जाएं, और अगर धूप में जा रहे हैं तो आप जरूर छाता लेकर के जाएं या गमछा या कपड़ा लेकर के जाएं, जिससे कि आप अपने शरीर को ढक सकें। ये बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि हमें दिक्कत नहीं होगी, बस 5 मिनट में होकर के आते हैं, वो कब समय बढ़ जाता है या कब बहुत ज्यादा तेज धूप होती है और हमारा शरीर उसमें जो लपेट में आ जाता है गर्मी की या लू की लपेट में, वो हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है।
0: और ओवरऑल आप क्या हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है, और महानगरों में एसी का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे भी तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में आप आकाशवाणी के श्रोताओं को बढ़ते तापमान और हीट वेव के बीच क्या संदेश देंगे?
1: मैं सारे श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि जितना भी हो सके, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो विश्व स्तर में जो गर्मी हो रही है, तो उसके लिए जो आपको जरूरी है वो ये है कि हरियाली ज्यादा रखें, तो पेड़ ऐसे बोएं और पेड़ों को काटे नहीं जो कि पेड़ आपको छाया देते हैं, तो छायादार वृक्षों का आप जरूर लगाएं, पार्क में या जहां भी जगह मिले उसको आप लगाएं। दूसरी चीज है कि कभी भी हम कहीं जाते हैं, चाहे पहाड़ों पे या कहीं और भी, तो वहां पे भी अपना जो पर्यावरण से बचाव है या उसको बचाव करने की हमारी क्षमता है, उसको हम ध्यान रखें। घरों में भी हम लोग, जैसे आपने कहा, एसी यूज करते हैं, तो आप उसका तापमान जो है उस हिसाब से रखिए जिसमें कि बहुत ज्यादा बिजली या ऊर्जा नहीं इस्तेमाल हो, और बिजली भी जहां इस्तेमाल नहीं हो रही है वहां बंद करके रखें। ये सब कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान देने योग्य है। पानी का भी हमें बचाव करना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसा आपने कहा आनंद जी, ये हमें बहुत जरूरी है कि हमारे श्रोता इनको ध्यान दें। अगर हम पानी का बचाव कर सकते हैं, कहीं बह रहा है तो उसको रोक सकते हैं, तो इससे पर्यावरण को मदद मिलेगी।
0: जी हाँ, छोटे छोटे बदलाव से ही हम एक समग्र परिवर्तन कर सकते हैं। गर्मी सिर्फ मौसम का बदलना नहीं रह गया, ये समय है सतर्क रहने का, अपने शरीर की आवाज सुनने का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखने का। हीट वेव हमें यही सिखाती है कि छोटी सी सावधानी भी बड़ी सुरक्षा बन सकती है। समय पर पानी पीना, धूप से बचना, लक्षणों को नजर करना, ये छोटी छोटी बातें किसी की जिंदगी बचा सकती हैं। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए हमारे श्रोताओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
0: उम्मीद है कि आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इस बढ़ती गर्मी के बीच खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रह पाएंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide.

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पे। रात्रि के 10 बज चुके हैं। आरंभ होती है गजलों का कार्यक्रम महफिल।

कार्यक्रम में आइए सबसे पहले हम गज़ल सुनते हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में ये गज़ल।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम महफिल में।

आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से गजलों का कार्यक्रम महफिल, और अगली गजल हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पे। रात्रि के 10 बज चुके हैं और अब क्षमा करें 10:30 हो रहे हैं और अब हम सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए सुनते हैं सबसे पहले लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है मुझे जीने दो।

रात अकेली है, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की और लीना चंद्रावर की आवाज़ों में।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ किले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती है, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई,

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और अब सुनते हैं आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का ये सुंदर सा गीत शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म दुलारी का ये खूबसूरत सा गीत। शकील बदायूनी के बोल को संगीत से सजाया था नौशाद ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईवासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। जिगरी दोस्त, अब इस कार्यक्रम का ये अगला गीत मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर की गाय इस गीत के साथ ही श्रोताओ, फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग से राधा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: चुपके चुपके चोरी चोरी चोरी हो।
0: हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 101.7 मेगाहर्ट्ज पे। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को

0: हल निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धारमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।